हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। अल्जाइमर की बीमारी एक दिमागी बीमारी है। ये डिमेंशिया की सबसे आम किस्म है जो व्यक्ति को धीरे धीरे परेशानियों व मुश्किलों की तरफ से ले जाता है। यह खतरनाक बीमारी है जो ज्यादातर 50 साल की उम्र के बाद ही देखने को मिलती है, परंतु ऐसा जरूरी नहीं है। कई शोध में पाया गया है कि ये बीमारी 30 या 40 साल के बाद भी शुरू हो सकती है। यहाँ तक कि आजकल ये बीमारी 30 साल से कम उम्र के लोगों में भी देखने को मिल जाती है। इस बीमारी की खोज सबसे पहले जर्मनी के एक मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिस्ट एलोइस अल्जाइमर ने 1906 में की थी, इसीलिए इस बीमारी का नाम उनके नाम से अल्जाइमर हो गया है। इस बीमारी में व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, उसका खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हर साल अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को इसके प्रति जागरूक हो जाए और उन्हें इस बीमारी की ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो सके। इसे व्यक्ति वक्त रहते इसका इलाज करना शुरू कर सकता है। ये बहुत खतरनाक बीमारी हो सकती है। यदि ये बीमारी किसी व्यक्ति को हो जाए तो इससे छुटकारा पाना आसान नहीं है। अल्जाइमर बीमारी एक दिमागी बीमारी है। इस रोग में दिमाग के कुछ ऐसे हिस्सों पर प्रभाव पड़ता है जो व्यक्ति की सोचने, समझने, याद करने और फिक्र करने की क्षमता के साथ साथ जबान पर काबू करते हैं। उन हिस्सों पर यह बीमारी असर डालती है। अल्जाइमर बीमारी का सबसे सामान्य प्रकार डिमेंशिया है। ये बीमारी बुजुर्ग लोगों में ज्यादा होती है जो धीरे धीरे याद करने और सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देते हैं। इस बीमारी के कारण व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले कामों को वह आसानी से नहीं कर पाता। वैज्ञानिकों ने इस बीमारी के बारे में बहुत अध्ययन किए हैं, परंतु कोई भी इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाया कि आखिर इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या है। ये एक ऑटोपैथिक रोग है। आज के लम्हे प्रोग्राम में हम अल्जाइमर बीमारी के उस लक्षण और उसके कारण के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं आपके आरजे चेतन से। इस बीमारी के शुरुआती लक्षण ये होते हैं कि व्यक्ति धीरे धीरे अपने सामान्य कामों को भूलने लगता है। लोग समझते हैं कि ये बुढ़ापे के कारण है। भूलना एक आम बात है, परंतु हर चीज को भूल जाना ये एक खास विषय है, इसीलिए व्यक्तियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। रोजमर्रा के कामों में परेशानियां आने लगती है। व्यक्ति आसानी से अपने दैनिक कार्यों को नहीं कर पाता। कार्य करने की क्षमता खत्म होने लगती है। व्यक्ति अपनी जीवन शैली की सामान्य बातों को भी धीरे धीरे भुलाने लगता है। किसी भी व्यक्ति का नाम या घर के आसपास की मशहूर जगह या रास्ते भी भूल जाता है। ये सब अल्जाइमर के लक्षण है। अल्जाइमर की बीमारी का एक लक्षण ये भी है कि इस बीमारी में व्यक्ति की जबान लड़खड़ाने लगती है और वह किसी भी बात को सही तरीके से नहीं कह पाता है। हर बात को कहने में अटकने लगता है और अटक अटक कर भी बात करते हैं। उसकी जबान उसके काबू में नहीं रह पाती। किसी भी काम को या किसी भी मसले को हल करने की शक्ति व्यक्ति के अंदर नहीं रहती। बस सोचने समझने की क्षमता खो बैठते हैं। व्यक्ति का मस्तिष्क सही से काम नहीं कर पाता। व्यक्ति को सामाजिक होने में परेशानी होती है। वह आसानी से लोगों से घुलमिल नहीं पाता और अकेले रहना ही पसंद करता है। अल्जाइमर के रोगियों के पर्सनालिटी में बदलाव देखने को मिलते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज रहते हैं।

अल्जाइमर्स बीमारी को लेकर वैज्ञानिकों ने अनेक शोध किए हैं और इसके कारण जानने की भरपूर कोशिश की है। अल्जाइमर बीमारी के कई कारण वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा भी गए हैं। यह पर हम कुछ कारणों के बारे में बताएंगे जो अल्जाइमर बीमारी के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। तो सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम आरजे चेतन के साथ। वंशानुगत या जेनेटिक कारण की वजह से भी अल्जाइमर की बीमारी हो सकती है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि परिवार के किसी सदस्य में यदि अल्जाइमर की बीमारी पहले रही है तो ऐसे में आने वाली पीढ़ियों में भी ये बीमारी देखने को मिल सकती है। व्यक्तियों के जीन्स दूसरी पीढ़ियों में जाकर इस बीमारी के लिए जिम्मेदार बन सकते हैं। अल्जाइमर बीमारी का एक कारण विटामिन B12 की कमी का भी होना भी है। जब शरीर में विटामिन B12 की कमी होने लगती है ऐसे में व्यक्ति का दिमाग कमजोर होने लगता है। इसे व्यक्ति को सामान्य दैनिक क्रियाकलापों को याद रखने में परेशानी होने लगती है। शरीर को पर्याप्त आराम की जरूरत होती है। यदि सही से नींद के चक्र को पूरा न किए जाए तो ऐसे में व्यक्ति का मस्तिष्क या दिमाग कमजोर होना शुरू हो जाता है। इसका फलस्वरूप अल्जाइमर जैसे खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। सिर में दर्द भी अल्जाइमर जैसे खतरनाक बीमारी का कारण हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को लगातार सिर या माइग्रेन की समस्या हो तो उसे इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। शरीर पर अतिरिक्त वसा होने के कारण भी दिमाग की नसें कमजोर हो सकती है। ये अल्जाइमर का कारण बन सकता है। चिंता, तनाव या डिप्रेशन इत्यादि मस्तिष्क के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। यह दिमाग के नसों को सुखा सकते हैं। इससे अल्जाइमर की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त जो मैं अब मैं बताने वाला हूँ इससे भी अल्जाइमर का रोग हो सकता है, जैसे मधुमेह की बीमारी रहने के कारण, देर से सोने और जागने के कारण, पोषण से भरपूर खाना न लेने के कारण अल्जाइमर्स हो सकता है। तो दोस्तों अब मैं इसका निवारण बताने जा रहा हूँ। इस बात का ख्याल रखना बेहद जरूरी है कि अल्जाइमर की बीमारी का कोई भी सटीक इलाज नहीं है। यदि यह बीमारी किसी व्यक्ति को हो गई तो इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ यही है कि उनकी अच्छी देखभाल की जाए, उनका खास ख्याल किया जाए, उसके साथ साथ उन्हें अच्छे खाने पीने, पोषण से भरपूर आहार, व्यायाम, सुबह जल्दी उठने और रात को जल्दी सोने का खास ख्याल रखना जरूरी है। इस तरीके से किसी हद तक उसकी उस बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है, परंतु बीमारी पूरी तरीके से खत्म नहीं हो सकती है। अल्जाइमर भूलने की बीमारी की सबसे आम किस्म है। WHO के अनुसार दुनिया भर में लगभग 55 मिलियन लोग इस भूलने की बीमारी से जूझ रहे हैं। ये बीमारी मस्तिष्क में याददाश्त को नियमित करने वाले हिस्सों को प्रभावित करती है, जिसके कारण व्यक्ति का अस्तित्व, उसकी पहचान, शख्सियत, व्यवहार, उसके मिजाज, यहाँ तक कि उसके पूरे याद करने वाले हिस्से पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। डिमेंशिया की बीमारी के कम से कम 100 किस्में होती है, परंतु सबसे जानी पहचानी किस्में अल्जाइमर है। स्त्रियों में पुरुषों के मुकाबले ये बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है। ये बीमारी आजकल तेजी से लोगों में फैल रही है। ये बीमारी कंट्रोल की जा सकती है, इसीलिए इस बीमारी से पीड़ित लोगों को हताश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को अल्जाइमर रोग है तो उसे तुरंत चिकित्सक से सलाह लेना आवश्यक है। वेल डियर फ्रेंड्स, विद दिस वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट अल्जाइमर्स, वी रैप अप द प्रोग्राम फॉर टुडे। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, बाय। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

0: ഇരിക്കും. സമയം ആർക്കു വേണ്ടിയും കാത്തു നിൽക്കില്ല, നാം അതിനുവേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കണം എന്ന് വില്യം ഷേക്സ്പിയർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രണ്ടറ്റവും അതിനും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹ്രസ്വമായ കാലഘട്ടമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. അത് സമയം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ കാലയളവിനുള്ളിൽ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലും കുടുംബത്തിലെയും സമൂഹത്തിലെയും ഒരു അംഗം എന്ന നിലയിലും ധാരാളം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും കടമകളും നമ്മളിൽ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുണ്ട്. അവ യഥാസമയം ചെയ്ത് തീർക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സമയക്രമവും ഒരു സമയനിഷ്ഠയും അടുക്കും ചിട്ടയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഒരു വ്യക്തി തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു അവസരവും പാഴാക്കാറില്ല. എല്ലാം നാളേക്ക് മാറ്റിവെക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി നാളെ നാളെ നീളനീളെ എന്ന രീതിയിൽ ജീവിതം മുന്നോട്ട് ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ കാലം ആർക്കും വേണ്ടിയും കാത്തു നിൽക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് സമയത്തിൻ്റെ വില തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെ യഥാവിധി വിനിയോഗിക്കാൻ നാം ഓരോരുത്തരും ശീലിക്കുക.
1: ഇതുവരെ കേട്ടത് സുഭാഷിതം പുനഃപ്രക്ഷേപണം, ഡോക്ടർ പ്രദീപ് ഇറവങ്കര അവതരിപ്പിച്ചത്. ആകാശവാണി അനന്തപുരി എഫ് എം കാലാവസ്ഥ അറിയിപ്പ്. തിരുവനന്തപുരത്തും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ആകാശം ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായിരിക്കും. ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ മഴയോ ഇടിയോടുകൂടിയുള്ള മഴയോ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. ഇനി രാവിലെ 5:48 വരെ വിവിധ് ഭാരതി റിലേ ചെയ്യുന്ന പരിപാടികൾ.
2: पार्सल बहुत ज्यादा बाहर से आता है और जो न्यूट्रिशन होना चाहिए वो एक्चुअली नहीं होता है और उसके अलावा भी बहुत सारे जो एडवांस टेक्नोलॉजी इतना सारा हो चुका है, जो परिश्रम होना चाहिए वो है ही नहीं है. तो जो पसीना निकलना चाहिए वो नहीं निकलते है, जो किसी को भी थोड़ा मेहनत परिश्रम लेकर करना चाहिए वो नहीं कर पाते है. ये पूरा हर एक चीज आप अगर देखते तो रोड रेज अगर होता है तो परेशान होकर घर से निकलते हैं, जल्दी गुस्सा आ जाता है
3: जी.
2: और इरिटेट हो जाते हैं. और ये पूरे चीज का मेन कारण क्या है कि नींद, ठीक से नींद नहीं करना, ठीक से पानी नहीं पीना, ठीक से श्वास नहीं लेना और ठीक से खाना नहीं चबाना और ठीक से परिश्रम नहीं करना. ये इन चीजों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से अगर हम बात करेंगे तो जो भी हमारे जो श्रोतागण जो है, जो लिसनर्स जो है, वो अपना लाइफ डे टू डे में उतार सकते हैं. ये कैसा हो सकता है, देखिए हमारा शरीर तो कुदरत से आया है, वो तो गारंटी की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शरीर कुदरत से आया, कुदरत में ही जाने वाला है, जहां से आया वहीं पर ही जाएगा. तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें जो पांच पावर कुदरत ने जो नियम दाया था, सी एक फिलोसॉफिकल बातें करता हूं कि जब कुदरत जब हमको शरीर दे रहा था तो हमारे ऊपर एक नियम कानून था. जब ये मैं आकाशवाणी का अंदर आया तो गेट में बोला गया था कि भाई आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते, परमिशन लेके आना है, पूरा नियम कानून है. तो नियम कानून का ये आपको शरीर में दे रही हूं तो ये शरीर में आपको रहना है
3: जी.
2: रहना है 100 साल तक रहना है. तो 100 साल रहने के लिए उसके लिए मुझे रेंट चाहिए. वो रेंट में क्या चाहिए, हमें 2 किलो सोना चाहिए, 4-5 बंगलो चाहिए या फिर इतना प्रॉपर्टीज चाहिए, ये पूरा नहीं चाहिए. उसको चाहिए सिर्फ 5 पावर चाहिए. वो कौन सा 5 पावर चाहिए, पानी देना है, खाना देना है, नींद देना है, श्वास देना है और लेबर देना है. इसमें परसेंटेज होता है, 100% अगर हम बात करें तो परसेंटेज का 100% पानी 72% है. हमें इतना पानी देना है, सिर्फ 12% खाना देना है यानी कि न्यूट्रिशन देना है. फिर आते हैं 6% हमें को नींद देना है
3: जी,
2: 6% श्वास देना है
3: जी,
2: सिर्फ 4% हमें लेबर देना है. तो ये इतना चीज हमें शरीर को देना है, ये समझना जरूरी है. ये समझने के लिए थोड़ा सा विस्तार से हमें बात करना जरूरी है
3: जी.
2: तो पॉइंट ये बनता है कि 100% अगर हमको रहना ये दे दिया तो कुदरत खुश होकर के 100 साल के ऊपर 20 साल और हमें बोनस में मिलेगा. सो 120 साल की जिंदगी गारंटेड हो जाती है. और आजकल अर्ली एजिंग आ रहा है, लोग जल्दी बूढ़े होते जा रहे हैं. जब तक जियेंगे बीमारी से जियेंगे
3: जी.
2: तो बहुत परेशान होकर जियेंगे पूरा. अगर आप जिंदगी का 25-30% जो रस्ते में बोलते हैं ना, हम लोग ट्रैवलिंग भी करते रहते हैं और बाकी 25-30% झगड़े में गुजार देते हैं, बाकी 25% कन्फ्यूजन में गुजारते हैं, मांड हम जी लेते हैं
3: जी.
2: तो जब 100 साल की जिंदगी कुदरत ने दिया है, ये 5 चीजों को समझ लेंगे ना रोड रेजेस रहेगी, ना हम ज्यादा करके गलत सिस्टम में नहीं रहेंगे और अपने आप को अच्छे से जी सकते हैं, रोज अच्छे से जी सकते हैं. दैट मीन्स यू शुड वी कैन लिव इन प्रेजेंट. हम प्रेजेंट में बहुत सही तरीके से जी सकते हैं
3: जी.
2: तो हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है कि हम पानी से शुरू करते हैं कि पानी कैसे पीना चाहिए, खाना कैसे खाना चाहिए, उस बेस पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे.
3: क्या बोलते
2: आप देखिए मैंने बोला 72%

0: 70 kg का है। अगर मैं 70 kg का हूँ तो मुझे कितना पानी पीना चाहिए? मुझे एक बात बताइए ममता जी, पानी आप कितना पीते हो दिन का?
1: हमें तो ऐसे नहीं आकलन कर सकते। हाँ, एक बोतल रहती है साथ में, एक बोतल दिन में, और मुझे लगता है रात को एक बोतल दो दो ढाई लीटर तक मुश्किल से पानी पी लेते
0: हैं। मतलब कोई प्रॉपर कैलकुलेशन?
1: प्रॉपर कैलकुलेशन,
0: आप एक लीटर भी पियेंगे या तीन लीटर भी पियेंगे?
1: हाँ, कभी
0: प्यास लगे तो कभी कभी एक लीटर पूरा पी लेते
1: हैं। कभी कभी बोतल यूं ही रखी रह जाती है, भूल जाते हैं।
0: दैट मीन्स दैट इज अ प्रॉब्लम। कुदरत ने आपको नियम बनाया था, आपको मेरा बॉडी में 72% पानी तो देना ही है
1: जी।
0: और बॉडी में पानी जो है हर आधा घंटे में कम से कम 30 ml पानी निकल जाता है। 72% पानी में अगर मान लीजिए कि 5% निकल जाएगा तो कितना बचा? उतना परसेंटेज बचा, 68-70% बचा। फिर हर आधा घंटे में पानी बाहर निकल रहा है तो हमारा पानी संतुलन 72% तो हमें रखना ही है। एनी गिवन टाइम पानी 72% से कम नहीं होना चाहिए, डिहाइड्रेशन हो जाएगा बॉडी। उससे ज्यादा पानी देंगे ओवर हाइड्रेशन हो जाएगा, ज्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए, कम पानी भी नहीं होना चाहिए। अगर हर आधे घंटे में पानी, अगर इतना पानी जा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? पानी को रिप्लेस करना जरूरी है, यानी कि जितना पानी गया उतना पानी आपको पीना जरूरी है। दैट मीन्स पूरा दिन में, यानी कि 8 घंटे अगर आप सोने का निकाल देते हो, 16 घंटे में आपको कम से कम 30 बार पानी पीना चाहिए। वो भी कितना पानी चाहिए? एनी गिवन टाइम कभी भी आपको आधा ग्लास से ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। कोई बोलते हैं कि 1 glass, 2 glass, 3 glass पानी पीना चाहिए, नहीं, ओवर हाइड्रेशन हो जाएगा। तो हमें पानी थोड़ी थोड़ी पीना चाहिए। जैसे कि घर के अंदर पूल का पौधा है तो पानी हमको छिड़कना पड़ता है, अब बाल्टी भर के पानी तो नहीं डालेंगे।
1: बिल्कुल।
0: सो दैट इज द रीजन कि हमको एक साथ में पानी उठा करके ऊपर से पानी पीते हैं, वो भी नहीं पीना चाहिए। तो पानी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, इसके लिए 72% ही आपको रखना जरूरी है। दैट मीन्स एक कैलकुलेशन के हिसाब से मेरी अगर वजन 70 kg की है, x3 करना है मुझे 0.03%, दैट मीन्स 7 × 3 = 21, यानी कि 2 liter और 125 ml, यानी कि मुझे 2 से 2.25 liter पानी मुझे 16 घंटे में फिनिश करना है। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने अगर किसी ने बोल दिया कि हाँ ये बॉडी के लिए 2 liter पानी पीना चाहिए, 16 घंटे में आपको उसको डिवाइड करना चाहिए। आपका पानी का जो कैलकुलेशन है 16 घंटे में डिवाइड करेंगे तो आपका पानी का कैलकुलेशन मिल जाता है।
1: तो ये पानी के बारे में थी। अब मतलब आपने क्या कहा?
0: सिर्फ पानी जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारा शरीर का। लोगों को पानी पीना नहीं आता बिकॉज वो पूरा बॉटल उठा के पी जाते हैं, वो नहीं पीना चाहिए। हवा में पीना नहीं चाहिए, होठ पे लगा के पानी को खींचना चाहिए। ये ही लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है। पानी पीना आना चाहिए इंसान को। जब पानी पीने को अच्छे से आ जाएगा, देखिए आप बच्चा दौड़ के आएगा पूरा घटाघट करके पानी पिएगा, आधा लीटर 1 liter पानी पी जाएगा, वो भी जल्दबाजी में पिएगा, वो कभी नहीं करना चाहिए। थोड़ा शांत होकर के पीना जरूरी है। और हर आधे घंटे में अगर आप पानी पी रहे हो आपको प्यास लगेगी नहीं।
1: जी जी,
0: यानी कि इंसान को कभी प्यास लगना नहीं चाहिए। तो प्यास लगने से पहले पानी पी लेना चाहिए।
1: और बच्चे तो ये भी कहते हैं अरे मुझे प्यास नहीं लगती। बच्चों को अगर कहा जाए पानी पीने के लिए, वो कहते हैं मुझे तो प्यास ही नहीं लगती क्योंकि दिन भर एसी में बैठे रहते हैं, उनको प्यास महसूस नहीं होती।
0: तो
1: बच्चों की और एक समस्या डॉक्टर साहब, वो है मोटापा और उनकी जो सोशल मीडिया, मोबाइल स्क्रीन की लत, ये भी है। तो कई बार इससे जो बेचैनी के कारण एकाग्रता की कमी होती है बच्चों में, ये आजकल समस्या बढ़ रही है। तो ऐसे में फिटनेस के लिए बच्चों में एकाग्रता बनी रहे, उनका मोटापा कम हो, चिड़चिड़ापन कम हो, इन सब के लिए उसमें माता पिता की क्या भूमिका होती है और बच्चों की क्या भूमिका होती है? कैसे शुरुआत करें फिटनेस की और कैसे बढ़ें?
0: पेशेंस जो है वो माता पिता ही दे सकते हैं। ओके, बच्चों का जो भी प्रॉब्लम इश्यूज आ रही है वो तो सोशल मीडिया की वजह से आ रही है, स्कूल पे ये तो कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है।
1: फिटनेस के लिए क्या करें?
0: कॉम्पिटिशन के साथ ही फिटनेस जुड़ा हुआ है। तो आपको कॉम्पिटिशन यानी कि आप क्या बनना चाहते हो उस लाइफ में, उसके बेस पर होता है। पेरेंट्स थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं बच्चों को ये करना ये करना, बच्चों को एक्चुअली उनमें क्या रुचि है। उसके बाद अगर डे वन से ही बिगिनिंग से अगर आप घर के अंदर का वातावरण अगर ऐसा बना के रखेंगे, जैसे कि भाई थोड़ा सा जिम एक्टिविटीज होगा या बिरेनो पुलअप्स का कुछ हो सकता है, या फिर जैसे कि घर का जो बातचीत में क्या होता है, क्या बनना चाहता बच्चा, वो आईपीएस बनना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, या फिर एक डिपेंड होता है बिजनेसमैन भी बनना है, तो उसके लिए फिटनेस का होना बहुत जरूरी है। घर का डिसिप्लिन यानी कि कितना बजे उठना है, कितना बजे सोना है, ये सब कुछ आता है सोने पर। बच्चा कितना बजे सो रहा है? अगर वो 12-1 बजे के बाद सोता है, दूसरा दिन आप उससे कोई भी चीज को उम्मीद आप मत रखिए, बिकॉज वो चिड़चिड़ा रहने वाला है, बिकॉज बॉडी में जो रिपेयर होना था वो नहीं हो पाया। तो ये जो टॉपिक है ना, मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा, बिकॉज हम पानी का जो बात किया है, पानी का इम्पोर्टेंस बच्चों को समझाना जरूरी होता है कि ये बच्चा हर आधे घंटे में प्यास लगने तक वेट नहीं करना है, प्यास लगने से पहले पानी पी लेना, बिकॉज बॉडी का नीड है। बिकॉज हर आधे घंटे में पानी बाहर जा रहा है, थ्रू यूरिन से जा रहा है, आंसू से जा रहा है, पसीना से जा रहा है, और हमारे

0: से पानी बाहर जा रहा है। अगर पानी बाहर जा रहा है तो पानी अंदर आना जरूरी है। अगर पानी ठीक से नहीं पियेंगे, बॉडी उनका ठीक से फंक्शन नहीं करेगा, माल फंक्शन करेगा, इसका मतलब वो चिड़चिड़ा ही रहेगा और कुछ चीजें समझ में नहीं आएगा, लेथार्जी तक जाएगा या कुछ चीज स्कूल में भी उनको नींद आने लगेगी या फिर उनका पसीना बदबू आने लगेगी। ये पूरा सोशल इम्पैक्ट हो रहा है बच्चों में।
1: ज्ञान है, लेकिन यहाँ हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वो नुस्खे क्या है,
0: नुस्खे
1: वो फिटनेस के लिए नुस्खे कैसे उन्हें जोड़े, कि उन्हें एक्सरसाइज से जोड़े, सांस के प्रयोग से
0: या इसके स्कूल का जो वातावरण कैसे उसके ऊपर डिपेंड रहता है। उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते कि स्कूल का क्या है, हम नहीं जानते। अब स्कूल प्रबंधन तो करेगा उनको क्या एक्टिविटी देना क्या नहीं देना वो बात हो जाती है। अगर स्कूल से बाहर आने के बाद की अगर हम बात करें तो बच्चों को मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कुछ भी है उनका स्कूल वर्क जो है रात को 8 बजे से पहले फिनिश करवा देना चाहिए। खाना जो उनको 8 बजे से पहले हो जाना चाहिए, ओके। उसके बाद उनके पास कुछ नहीं होना चाहिए, उनके पास सिर्फ एंटरटेनमेंट थोड़ा देर के लिए होना चाहिए, दैट इज कोई भी चीज, फिजिकल हो सकता है या टीवी हो सकता है, व्हाट एवर द माध्यम, मोबाइल से नहीं। उसके बाद फिर वो जल्दी सो जाएंगे, सुबह अगर वो जल्दी उठ जाते हैं तो उनके पास बहुत टाइम होता है स्कूल के लिए। अगर मान लीजिए उनको 8 बजे जाना है तो यहाँ पे वो लोग 7:30 बजे उठते हैं, फिर भाग दौड़ करते हैं, फिर उनके पास फिटनेस के लिए टाइम नहीं होता। अगर वो जल्दी सो जाते हैं तो उनके पास 2 घंटा एडवांसली मिलता है, उस 2 घंटे के अंदर उनका होमवर्क भी हो जाएगा और उनके पास एक एक्स्ट्रा आवर्स भी बचेगा। उस एक एक्स्ट्रा आवर्स में उनके पास अगल बगल में जिम होता है, आजकल हर सोसाइटी में जिमनेशियम्स होती है, इसका मतलब वजन उठाना नहीं होता है, कुछ एक्टिविटी, थोड़ा वॉक पे चले गए, रनिंग पे चले गए, हॉकी के लिए, फुटबॉल के लिए, कुछ भी एक एक्टिविटी अगर कर लेंगे उनका फिटनेस कहीं नहीं गया। एक की मतलब है कि उनके जल्दी सोने से सुबह उनको 2 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है।
1: जी,
0: लेट सोएंगे उसका कोई मतलब नहीं, वो कितना भी बड़ा होमवर्क क्यों ना हो उन्हें लेट कभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज बॉडी का जो अंदर का जो रिपेयरिंग जो होता है दैट हैपेंस ओनली बिटवीन रात का जो 11 से लेकर के सुबह का जो 2 बजे का जो टाइम का जो होता है उस टाइम पर किसी को जागते नहीं रहना चाहिए। मुझे भी, आपको, बच्चों को, किसी को भी उस वक्त जागना नहीं चाहिए, उस वक्त सोना चाहिए ताकि उनका बॉडी अच्छा रहे, फिर जाकर के उनका फिटनेस प्रोग्राम ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। आप कुछ भी बोलो बच्चे करने लगता है।
1: जी जी।
0: अगर आप बच्चा देरी से सो करके देरी से उठ के भागदौड़ करके करेगा और बोले कि आप शाम को फिटनेस करो तो वो नहीं हो सकता है, बिकॉज वो उसके लिए उसका बॉडी तैयार नहीं होगा। फिर हम जोर जबरदस्ती करेंगे अच्छे मन से नहीं कर पाएंगे। सुबह जल्दी उठेंगे तो अच्छे मन से सब कुछ कर पाएंगे, फिर उनमें एक ताकत आने लगती है, मुझे ये बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे ये चैलेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया, सोना बहुत जरूरी है, स्लीप पॉइंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर।
1: जी जी जी, बिल्कुल सही समय पर सोना। और आजकल ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है,
0: नहीं सोते बच्चे, मोबाइल
1: पूरी रात,
0: हरेक घर में आजकल क्या हो गया, 2-2, 3-3 कमरे तो है, बच्चे अंदर डोर लॉक करके क्या कर रहे हैं नहीं मालूम।
1: बिल्कुल सही।
0: सो दिस इज व्हाट, घर के अंदर का डिसिप्लिन के ऊपर सब कुछ होता है।
1: जी
0: जी।
1: डॉक्टर राज, आपने मार्शल आर्ट किया है, कराटे सीखा है और देख के ये लग रहा है कि आप तो बहुत फिट हैं, लेकिन ये कहना आसान है, करना बड़ा कठिन होगा। आपने तो लंबी, हमें लगता है, साधना की है और बहुत सारे आपके वीडियोज देखे जिसमें आपने बहुत सारे करतब भी दिखाए हैं। हमें बताइए कि अमूमन जैसे घर में लड़कियां होती हैं तो हम कहते हैं कराटे सिखाओ क्योंकि वो आगे चलकर अपनी सुरक्षा खुद कर सकें, तो किन लोगों को ये मार्शल आर्ट सीखना चाहिए, किन लोगों को नहीं सीखना चाहिए?
0: आप अगर महिलाओं की अगर बात करें, मार्शल आर्ट तो सबको सीखना चाहिए, अलग बात होता है। मार्शल आर्ट बहुत डिसिप्लिन्ड आर्ट होता है, बट बहुत मस्कुलिन एक्टिविटी औरतों को नहीं करना चाहिए। यानी कि कुदरत ने हमको 2 नियम से भेजा हुआ है, एक वह पुरुष प्रकृति और एक प्रकृति है, प्रकृति मतलब माता है यानी कि स्त्री है और एक पुरुष है। सो क्या होता है कि भाई इससे कुदरत ने बना के भेजा है मस्कुलिन एंड फेमिनाइन
1: डिफरेंस
0: वो है। तो औरतों को औरतों का ही एक्सरसाइजेस होते हैं, उनका एक वातावरण का चलने का हर एक वो चीज बिल्कुल नया नाजुकता होता है, वही चीज मर्दों में कम मिलता है बिकॉज ऑफ मस्कुलिन होता है। तो इसके लिए मस्कुलिन प्रवृत्ति होती है जो प्रोटेक्टर बनते हैं वो, कि भाई एक है तो उनका एक्सरसाइज करना, बॉडी बिल्डिंग करना या फिर स्पोर्ट्स करना फलाना, है ना, ये पूरा एक चीज होती है। मगर आजकल वो जो 50% जो बोलता है ना, जो स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, वो कानून बना दिया ऐसा, बट कुदरत ने नहीं बनाया। कुदरत ने औरत को औरत ही बनाया है, मर्दों को मर्द ही बनाया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि बहुत ज्यादा औरतों का जो बॉडी का स्ट्रक्चर जो है, उनका जो मसल कुदरत ने नहीं दिया है, जितना मर्दों को दिया
1: ताकत भी नहीं दी,
0: ताकत नहीं दिया, बिकॉज उनका अलग किस्म का ताकत है, मगर वो अलग तरीके का होता है। बट आजकल क्या हो गया कि बहुत ज्यादा लोग वेट ट्रेनिंग करना जरूरी है, औरत 35 साल के बाद उनको वेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट। कितना वेट ट्रेनिंग, बॉडी बिल्डर ने मसल्स नहीं दिखाना है, ओके, वो चीज अलग, वो फील्ड है, वो स्पोर्टिव फील्ड होती है, वो फील्ड में जाने वाले फिर उसी में रहते हैं, वो ऐसे बन जाते हैं। एक औरत जो है

0: औरत का एक्टिविटी करते रहेंगे तो बहुत अच्छा हो जाता है उसको, वो नया नाजुकता रहेगा। फिर आगे जाकर के बहुत ज्यादा मार्शल आर्ट करेंगे, बहुत ज्यादा किक्स करेंगे, बहुत ज्यादा फाइट करेंगे, तो उसमें उनका चलने का चाल बदल जाएगा, बोलने का तरीका बदल जाएगा, मेल का जो हॉर्मोन्स होता है वो उसमें आने लगते हैं। दैट मीन्स उनका देखो एक चाल ही उनका अलग पड़ जाती है, फिर वो उनका ड्रेसिंग अलग हो जाती है, फिर एक औरत से धीरे धीरे धीरे वो मर्द में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही मर्दों को औरतों का औरत जो एक्टिविटी करते हैं तो वहां पर भी क्या होता है कि कुछ हार्मोन इम्बैलेंस होता है। इसका मतलब अबनॉर्मल होते ऐसा नहीं है, रहेंगे सब कुछ ठीक ही रहेगा। बट मेरा सलाह, मैं मार्शल आर्ट अगर कर रहा हूं तो मेरे क्लासेस में मैं सेल्फ डिफेंस सिखाता हूं, उन्हें बहुत ज्यादा कराटे रिलेटेड एक्सरसाइज नहीं करवाता हूं। औरतों के एक्सरसाइज जो होता है वही हम करवाते हैं जो उनमें आगे जा करके उनमें कोई तकलीफ ना हो, उनका जो लोअर एरिया में कभी तकलीफ नहीं होना चाहिए, तो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उनमें बॉडी का स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं होना चाहिए ना, कि ये सबसे हम सोच समझ कर एक्सरसाइज करते हैं। जो इंस्ट्रक्टर होते हैं बहुत अच्छा होना चाहिए कि वहां जाकर के सीखना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि फिल्म देख लिया, किसी ने कुछ भी करवा दिया, कोई बहुत लेग स्प्लिट करवा दिया। और ये सब मस्कुलिन एक्टिविटी बहुत ज्यादा औरतों को नहीं करना चाहिए। बस एक बात है कि सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए अपना प्रोटेक्शन के लिए, मगर अच्छे तरीके से। यही मैंने वापस पानी पे आया, पानी लेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे, नींद लेंगे और श्वास अच्छे से लेंगे, फिर ये जो परिश्रम सिर्फ 4% से ज्यादा नहीं करेंगे तो उनको कभी भी सेल्फ डिफेंस की प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज वो बहुत समझदार बन जाते हैं, वे कोई गलत रास्ते में जाएंगे ही नहीं। हो तो इसके लिए फॉर्मूला जो है ना हमारे, वो पकड़ के ही चलना है।
1: और ये बड़ी सही बात बताई कि अमूमन लड़कियों को ये बोला जाता है कि उनको अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मार्शल आर्ट सीख लेना चाहिए, जूडो कराटे में डाल देना चाहिए। तो ये सही बात बताई कि किन लोगों को चाहिए, जरूरत है, किन लोगों को नहीं जरूरत है। यहां पर एक बात जहन में आई है वो ये कि डिप्रेशन और चिंता से परेशान हाल लोगों के लिए व्यायाम, फिटनेस के उपाय कितने कारगर होते हैं और किस तरह से?
0: देखिए, फिटनेस मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर हर एक के लिए, औरत मर्द का कोई इसमें भेद नहीं होता है। बच्चे वेलनेस मैनेजमेंट बोलते हैं कि उनका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है। आजकल प्रॉब्लम लाइफस्टाइल डिजीज के ऊपर है। हर एक को जो सोने से लेकर के उठने तक, अगर हम पानी एडजस्टमेंट कर लिया तो न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट आता है। तो न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए, खाना कैसा खाना चाहिए, खाना खाने के बाद आपका नींद कैसा हो, नींद के बाद आपका ब्रेथ कैसा हो, ब्रेथ के बाद आपका परिश्रम कैसा हो। तो इसका मतलब क्या कि फिट रहने के लिए जिम ज्वाइन करना जरूरी नहीं होता है।
1: जी जी,
0: सिर्फ योगा ही काम नहीं आता, एरोबिक्स ही काम नहीं आता है, जुम्बा ही काम नहीं आता है। तो आपका वेलनेस मैंने आपका ब्रीथिंग, आपको पहले अपना शरीर को पहले समझो आप, आपका शरीर क्या बोलता है, इस वक्त आपका वजन क्या है। कोई कोई ऐसा है कि वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 100 किलो के ऊपर चले जाता है, उनका पोस्चर खराब हो जाता है, चलने में दिक्कत, घुटने में तकलीफ, ओके, फिर उसके बाद घर का जो बहुत माहौल कुछ सही नहीं होता तो उसकी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो बहुत सारे चीजों को मिला करके वहां पर तकलीफें शुरू होती है। तो इसके लिए अगर वो एक सही वेलनेस गुरु के अंडर पहुंच जाते हैं, अगर उनका सुबह अगर अच्छा हो जाती है, रात तक को सही रहेंगे, यानी कि उनका जो एक्सरसाइज में इतना कैलोरीज बर्न होना चाहिए, जितना आप कैलोरी खाते हो उतना कैलोरी आप सही तरीके से बर्न कर रहे हो, और आपका बॉडी अच्छे से स्ट्रेच कर रहे हो, और आपका ब्रीथिंग सिस्टम अच्छा है, आपका जो ब्रेन फंक्शन अगर सही है, आप ब्रेन को कितना ट्रेन कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट्स ऑल डिपेंड होता है कि आप सुबह का एक आधा एक घंटा दो घंटा आप कहां जाते हो, किधर आपका टाइम व्यतीत करते हो, और किसके साथ आप बैठते हो, क्या करते हो। जो आजकल गार्डन में जो एक्सरसाइज होता है, पर घूम के आते हैं सब, हर एक को सुबह जल्दी उठ करके एक 1.5-2 घंटा देना जरूरी होता है। कुछ लोग दोपहर को एक्सरसाइज करते हैं, शाम को एक्सरसाइज करते हैं, नेसेसिटी नहीं होता है। आप सुबह का जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, और कुछ 1.5 घंटा अपने लिए दे दो, फिर बाकी बचा 8 घंटा सोने का अगर छोड़ेंगे तो बाकी बचा 14 घंटा, 14 आवर्स आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। कोई कलेश नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं है। इसका मतलब सब कुछ आपका सुबह का 2 घंटे के ऊपर आधारित है।
1: तो वो 2 घंटे में कुछ टिप्स आप बता सकते हैं?
0: आपको अच्छे योगा इंस्ट्रक्टर के अंडर योग कर लेना चाहिए, एरोबिक्स होता है या जिम होता है, मतलब अच्छे इंस्ट्रक्टर्स होना जरूरी है, वो ट्रेंड होना जरूरी है कि आप मिलजुल के कैसे एक्सरसाइज, आप घर पे भी कर सकते हो, आजकल ऑनलाइन भी बहुत हो जाता है, हर वो चीज आपको मिल जाती है। सब कुछ है, मगर डिपेंड होता है आप कितना लेजी है। ये बोलते हैं कि नहीं आज टाइम नहीं, आज ऐसा हो रहा है, आपके पास बहाने बहुत है। एक्सरसाइज नहीं करने के लिए बहाने लाखों है।
1: जी बिल्कुल, टाइम नहीं है।
0: हाँ जी, टाइम नहीं होता है, बट आप टाइम निकाल सकते हैं। आपके पास खुद रहते 24 घंटा दिया है, आप उसमें 7 से 8 घंटा सोने का निकाल देंगे, 16 घंटा आपके पास है। 16 घंटे में आप बहुत कुछ कर सकते हो।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि आप 8 घंटे से ज्यादा क्या काम करते हो? 9 घंटा 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं होता है। फिर बाकी बचा 8 घंटा

0: क्या कर रहे हो आप, तो यहाँ पर आपके पास टाइम नहीं बोलने का कोई मतलब ही नहीं है. टाइम को आपको मैनेज करना पड़ेगा. ठीक है, हस्बैंड जल्दी जाते हैं, ओके, या फिर किसी को जल्दी ऑफिस जाना है, रात को लेट आते हैं, या बच्चों का, या हर एक चीज को मैनेज करना औरत के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. फिर भी स्मार्टली खुद के लिए 2 घंटा निकाल के सब कुछ पॉसिबल है.
1: जी बिल्कुल. बहुत सारे लोग बहुत सारी कंपनियों में काम करते हैं, 12-14 घंटे का काम है, तो उनके लिए बीच में भी समय होता है जहां पर वो छोटी छोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन वगैरह भी कर सकते हैं.
0: बहुत कुछ आता है.
1: डॉक्टर राज, हमें यहाँ बताइए कि बहुत कम उम्र की लड़कियों में आजकल पीसीओडी की समस्या होती है और उनकी बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती, खान पान की दिक्कतें होती हैं, तो क्या फिटनेस का जो फंडा है आपका, इन जो एक्सरसाइजेज वगैरह, इन सबसे कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है, किस तरह से, बताइए.
0: एक तो प्योरली रिलेटेड स्ट्रेस भी होता है, थोड़ा हेरिडिटी फैक्टर होता है उनपे, वारसांगिक जिसको बोलते हैं, कि उनका मां से और उनका मां से आता है, तो ये बात तो है. पर आजकल का जो खाने पीने का जो तरीका जो है, खास करके बहनों में, औरतों में, तो ये थोड़ा सा एक गांव की बात अलग है, बट सिटी में जो ज्यादा करके रहते हैं बाहर के खाने पे ज्यादा डिपेंड होते हैं, और खास करके जो आईटी सेक्टर में जो महिलाएं काम करते हैं, या फिर जैसा कॉर्पोरेट सेक्टर में जो काम करते हैं, पूरा दिन बैठ के काम करते हैं, ओके, बैठा रहना एक इश्यू बनता है. और उसके अलावा भी अगर देखा जाएगा तो उनका जो नींद का पैटर्न सही नहीं होता है, बहुत लेट से सोते हैं और लेट से उठते हैं, और उसके अलावा बैठे रहते हैं और खाना कोई ढंग का नहीं खाते, ये रियलिटी है, ये एक रीजन है. और ऊपर से मोटापा, एक वेट जो उनका होना चाहिए, आपका वेट बहुत आसानी से माप सकते हैं कि 1 फुट होता है, 12 इंच होता है, तो 1 फुट का 12 किलो, ऐसा 5 फुट है, औरत 5 और 5, 1, 5, 2, 5, 5, ज्यादा से ज्यादा 5-7 का हाइट के होते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो एनीथिंग 55 kg to 70 kg का बीच में होना चाहिए किसी को भी. अभी आजकल 80-90 से ऊपर क्रॉस हो रहे कुछ लोग, तो यही हिसाब से जब होता है तो एक ओवर वेट की वजह से फिर ये पूरा अंदर का सिस्टम बदलने लगता है. फिर भी उसका उपाय क्या होता है कि भाई सबसे पहले आप वेट कंट्रोल पे रखो, ब्रीथिंग अच्छे से करो, और खाना न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट सही तरीके से करो, और सही तरीके से योग अभ्यास करेंगे, कभी भी पीसीओडी का प्रॉब्लम नहीं आता है, ये रियलिटी है. और मेरे पास काफी लोग ऐसे आते हैं तो उनका विद इन 1-1.5 महीने के अंदर अंदर उनका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, बिकॉज सही तरीके से स्ट्रेचिंग करते हैं, सही तरीके से एक्सरसाइज कर लेते हैं, और सही उनको परीक्षण मिल जाता है, उनको मालूम है कि कितना पानी पीना चाहिए, कैसे श्वास लेना चाहिए, कितना नींद होना चाहिए, ये हर एक चीज उनको आइडिया होता है. सो दिस इज व्हाट इज, ये मैंने बोला ना कि 4+1=100 फॉर्मूला अगर सही तरीके से समझ जाएंगे तो कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं है.
1: जी
0: बिल्कुल. तो हमने पहले तो समझा, तो पानी का समझ लिया ना, अब न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट होता है, दैट इज अ भू तत्व, जल तत्व हो गया तो भू तत्व हो गया, और हमारे पास अभी भी 4 पॉइंट बाकी है, दैट इज अ न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट के बारे में देखना है, फिर आता है नींद का मैनेजमेंट देखना है, फिर ब्रेथ मैनेजमेंट देखना है, फिर लेबर मैनेजमेंट देखना है.
1: जी
0: तो दिस इज व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट इश्यू.
1: जी
0: तो अगर आप कोई भी आप प्रॉब्लम लो, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये फॉर्मूला के अंदर है.
1: जी
0: तो आप कुछ भी पूछो, आप फिर मैं आपको बोलूंगा कि आप नींद कितना घंटा करते हो, तो नींद आप भले 8 घंटा करते होंगे लेकिन कब सोते हो, आप बोलते हैं कि रात को मैं 12-1 बजे सोती हूँ और सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ, बाकी बचा नींद मैं दोपहर को कर लेती हूँ. नो, ये गलत होता है, ऐसा नहीं होता है. रेस्ट ले सकते हो, नींद जो लेना है आपको 24 घंटे में एक ही बार लेना है, 24 आवर्स में एक ही बार आपको नींद करना है.
1: क्या बात है.
0: हाँ, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट इश्यू. तो नींद इज क्या है कि 8 घंटे का नींद, 7 घंटा मिनिमम सोना है, 8 घंटा मैक्सिमम सोना है, इससे ऊपर बिल्कुल नहीं. उससे ऊपर मतलब क्या हो जाएगा कि आपसे नुकसान शुरू हो जाएगा. कम नींद भी तकलीफ देता है, ज्यादा नींद भी तकलीफ देता है.
1: जी
0: सो मैटर इज वेरी सिंपल. तो आपका 4+1=100 में ये 5 चीजों को मिलाना बहुत जरूरी है, वो परसेंटेज वाइज मिलाना जरूरी है. मैंने बोला 72%, 12%, 6%, 6% और 4%.
1: जी
0: तब जाकर के 100% हम जी सकते हैं.
1: जी तो आपने 5 तत्वों की बात की डॉक्टर साहब, आपने पानी का बोला कि वजन के हिसाब से इतना कैलकुलेट करना, बाकी को कैसे कैलकुलेट.
0: मैंने बोला कि उसके बाद का बात आती है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट.
1: वो
0: पानी का बिल्कुल बगल में क्या है, देखिए 5 अंगुली अगर आप देखते हो, किसी किसी का 6 अंगुली होती है, अलग बात है, लेकिन 5 उंगली होती है. छोटा उंगली दैट इज जल तत्व है, 5 तत्व का. सेकंड आता है भू तत्व है, दैट इज भू तत्व इन द सेंस के लैंड रिलेटेड होता है, दैट मीन्स जंगल है, लैंड पूरा हो गया, यानी कि अर्थ एलिमेंट्स बोलते हैं उसको. उसके हिसाब से देखा जाए हमें सिर्फ 12% हमारे बॉडी में सिर्फ 12% खाना देना है, दैट मीन्स न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट. हमारा शरीर के लिए न्यूट्रिशन चाहिए.

0: करीबन करीबन 70 न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है डेली की, रोज का, क्योंकि हम देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, हाथ पांव हिलाते हैं, मसल्स एक्टिविटी है, तो वजन उठाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, हर एक के लिए हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। ये जो न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा, खाना खाने से मिलती है। सनलाइट इज वन न्यूट्रिशन, पानी एक न्यूट्रिशन है, हवा भी एक न्यूट्रिशन है, उसके अलावा भी हमको 67 न्यूट्रिशन और देना है हमें। जिंक आता है, गोल्ड आता है, ठीक है, ये हर एक आयन आता है, प्रोटीन्स आते हैं, हर वो चीज, कार्बोहाइड्रेट से लेकर के हर वो चीज हमको देना होता है। ये पूरा न्यूट्रिशन हम खाने में हमको मिलता है। वो खाना कैसे होना चाहिए, रॉ खाना होता है, कुकड होता है, फ्राइड होता है, इन चीजों में। तो पानी तो हम पी लिया है, सनलाइट तो हमको मिल लिया, बाकी जो चीजों को उसको डिवाइड करके हमें खाना, ये खाने का पद्धति हमको समझ में आना चाहिए। ये खाना हम सब एक साथ में मिलकर खा लेते हैं। अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाके थाली ऑर्डर देते हो, उसके अंदर रॉ भी आता है, फ्राइड भी आता है, कुकड भी आता है, सब कुछ आ जाता, हम पूरा मिला देते हैं। एक्चुअली खाना खाने का तरीका क्या है, आपको तीन खाना साथ में नहीं खाना चाहिए।
1: जी जी,
0: तीन खाना कभी साथ में नहीं खाना चाहिए। कौन सा तीन खाना नहीं साथ में खाना चाहिए, कुक्ड, फ्राइड,
1: अच्छा,
0: और रॉ, यानी कि कच्चा, पका हुआ और फ्राई किया हुआ। ये तीनों को एक साथ में नहीं खाना चाहिए।
1: अच्छा,
0: ये अलग अलग खाना चाहिए। से आप जो भी रॉ खाते हो, वो रॉ जो होता है पेट में जाने के बाद वो 20-25 मिनट रहता है, उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। 20 मिनट में पेट खाली हो जाता है। बोलते ना पेट खाली है, तो पेट, अभी डॉक्टर बोलते ना कि दवाई लेने का, खाली पेट लेने का, या दवाई लेने का, यानी कि खाना खाने के बाद ना खाने का, पेट यहाँ पर होता है, पूरा पेट नहीं होता है। स्टमक तो इतना ही छोटा हमारा, एक मुट्ठी के बराबर स्टमक होता है, उसके अंदर एसिड्स होते हैं, जूसेस होते हैं। तो हम जो रॉ खाते हैं वो 20 मिनट से ज्यादा नहीं रहता है। इसके लिए पहले आपको सैलड्स या फ्रूट्स से जो भी है, रॉ जो होता है, आप खाने के बाद फिर आधा घंटे के बाद आप कुक्ड या फ्राइड खा सकते हैं।
1: अच्छा,
0: तो फ्राइड अगर आप खाते हैं तो उसका गुण अलग हो जाता है, और कुक्ड यानी कि बॉइल्ड जो खाते हैं उसका न्यूट्रिशन अलग हो जाता है। कुक्ड जो होता है उसका न्यूट्रिशन, और फ्राइड नेगेटिव न्यूट्रिशन, और रॉ जो ऑलरेडी वहां पे पड़ा है वो अभी वो काम कर रहा है, उससे पहले हमने सब तीनों मिला देंगे, तो उसमें से जो हमको जो पॉजिटिव न्यूट्रिशन जो शरीर को चाहिए था वो हमें नहीं मिला, वो कचरे में चले जाता, गोडाउन में चले जाता है। गोडाउन की तरह हमारे शरीर में, दुनिया भर बहुत सारे गोडाउन है हमारे शरीर में, तो जो जाना चाहिए था, आंख के लिए जाना चाहिए था, नाक के लिए, कान के लिए, मसल्स के लिए, ब्रेन के लिए, पूरा न्यूट्रिशन हमने दिया था जरूर, मगर पहुंचा गलत जगह पर, बिकॉज हमने सही तरीके से नहीं आया, यानी कि चिट्ठी तो लिखा हमने मगर एड्रेस ही नहीं लिखा। तो क्या हो गया, इतना मेहनत करके चिट्ठी लिखा मगर आपने एड्रेस ठीक से नहीं लिखा, तो पहुंचा ही नहीं। तो ये जो खाना जो हमको खाना है, सही तरीके से खाना है, और दूसरी बात है कि चबा के खाना है। खाना आधा घंटे तक खाना है आराम से, कोई भी चीज को आपको 15-20 बार चबाना जरूरी है, मुंह के अंदर सलाइवा के साथ मिक्स होकर के अंदर जाएगा, तब जाकर के पूरा बॉडी काम करने लगेगा, नहीं तो आपको न्यूट्रिशन बॉडी को मिलेगा नहीं है, तो माल फंक्शन करेगा बॉडी। जब माल फंक्शन बॉडी करेगा तो नेचुरली इरिटेटेड रहेंगे, गुस्सा करेंगे और लेथार्जिक रहेंगे, काम आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। काम तो किया आपने मगर मन से काम नहीं किया, उसको जो मार्क मिलना चाहिए था नहीं मिला, आपने पूरा मेहनत किया था, 99% आना जरूरी था मगर मुश्किल में 72%, 50% आता है, क्योंकि आपको पूरा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा, बिकॉज आपका न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट सही नहीं था। इसलिए खाना आपको सही तरीके से खाना है, चबा के खाना है, सलाइवा के साथ मिक्स करके आपको खाना है। दैट मीन्स मैं दो चीज बोलता हूं कि आपको प्यास नहीं लगना चाहिए, भूख नहीं लगना चाहिए, और तो एक मेरा जो आंसर आपको अटपटा लगा, नहीं लगा आपको?
1: अगर आपने नींद पूरी है तो नींद क्यों आएगी?
0: देखिए, लेकिन ये तो बात है आपको, हाँ, अगर आपको नींद आ रहा है, आपको अगर भूख लग रही है, दैट मीन्स आपको खाना खाना जरूरी था, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, आपको हर 3-4 घंटे में कुत्ते को तो एनर्जी देना था, आपने 3-4-5 घंटे तक कुछ खाया नहीं, तो नेचुरल आपको भूख लगेगी, फिर जाकर के आप हॉकिंग करेंगे, यानी कि ज्यादा खाएंगे और उल्टा सीधा खाएंगे, जो कुछ भी मिलता है वो खा जाएंगे। अगर आपने कैलकुलेटेड तरीके से खाना खा लिया तो आपको भूख ही नहीं लगेगी, बिकॉज आपको खाना देना जरूरी है। आप सोचेंगे मुझे भूख नहीं लगती इसके लिए मैं खाना नहीं खाऊंगी, वो गलत होगा। शरीर मांग रहा है लेकिन कुछ कारणवश आपको समझ में नहीं आ रहा है, बाकी भूख तो आपको लगेगा, शरीर को लग रहा है, मगर आपको ब्रेन में वो सिग्नल नहीं मिल रहा है।
1: जी जी जी,
0: वो न्यूट्रिशन तो मांग रहा है वो तो, लेकिन इसके लिए बोलता भूख आपको नहीं लगना चाहिए, आपको खाना देना जरूरी है, प्यास नहीं लगना चाहिए, आपको हर आधा घंटे में पानी पीना जरूरी है,
1: बिल्कुल
0: नींद नहीं आना चाहिए, मगर आपको सोना जरूरी है। आप सो जाएंगे तो नींद नहीं आएगी आपको, नींद आना मतलब बीमारी है, क्योंकि आपको आंख जल रही है फिर भी ड्राइव कर रहे हो, आपको नींद आ रही है फिर भी आप पिक्चर देख रहे हो, नींद आ रही है आप भी काम कर रहे हो, तो वो काम में एनर्जी रहेगी, 100% तो नहीं दे पाएंगे,
1: क्वालिटी नहीं मिलेगी,
0: नहीं मिलेगी। इसके लिए सोना जरूरी है, वो आठ

0: घंटा अगर आपने सो लिया ना, पूरे दिन में नींद आपको आएगी नहीं। फिर आपने पूरा बाकी फॉर्मूला पूरा कर लिया तो आपको 8-9 बजे तो नींद आप सो ही जाएंगे, नींद आना ही नहीं चाहिए आपको। तो ये हो गया आपका खाना, हो गया आपका नींद, 8 घंटा सोना जरूरी है। फिर आता है ब्रेथ लेने का तरीका होता है, श्वास आप कैसा लेते हो
1: जी,
0: या दैट इज व्हाट श्वास लेने को आजकल हम श्वास लेते ही नहीं ठीक से। कुछ लोग श्वास लेने भूल जाते, उनको आइडिया नहीं कि वो श्वास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, नहीं मालूम है। बिना श्वास का इंसान 1 मिनट भी जीना मुश्किल हो जाता है। आप पानी के बिना 2 महीना जी सकते हो।
1: तो कैसे फोकस करें?
0: तो ये जो श्वास लेने का फोकस कैसा होता है कि ये तो आपको बहुत सिंपल, जब हम पैदा होते हैं बच्चों को कोई सिखाया नहीं देता है। बच्चा सही तरीके से श्वास लेता है जब पेट से बच्चा बाहर आता है, आप देखो तो उसका जब श्वास लेता है तो उसका पेट ऊपर आता है, आगे जा करके हमारा पेट श्वास ले तो पेट अंदर चले जाता है। हम पेट अंदर लेते हैं, छाती को बाहर निकालते हैं श्वास लेने के लिए, पेट अंदर चले जाता है श्वास लेते हो। तो एक्चुअली गलत होता है, श्वास लेने का वो छोटा बच्चा आपको सिखाएगा, पेट से बाहर आया बच्चा है ना वो सिखा देगा। उसको आप ऑब्जर्व करो, वो श्वास ले रहा है तो पेट उसका ऊपर हो रहा
1: है।
0: हाँ, तो हमको डीप ब्रीथिंग करना जरूरी। एक बार श्वास लेना शुरू करेंगे तो पूरा दुनिया समझ जाएगा इंसान। वो कैसा होता है कि श्वास जब लेते हो तो नाक से

0: तक पहुंचाना जरूरी है, हर श्वास यहां तक पहुंचना जरूरी होता है। हम क्या करते हैं, श्वास आधा इंच का लेते, एक इंच का लेते, दो इंच का लेते, हमको 12 इंच तक का श्वास खींचना है।
1: जी जी
0: हाँ, तब जाकर के हमको दुनिया समझ में आती है। अगर हम आधा श्वास लेते हैं तो हमको दुनिया या सामने के लोग या हम बच्चे भी समझ में नहीं आएंगे, हमारा माँ बाप भी हमको समझ में नहीं आएंगे, हमारा गुरु भी समझ में नहीं आएंगे
1: जी,
0: और हमारा बॉस भी समझ में नहीं आएंगे और हमारा काम भी समझ में नहीं आएगा। क्यों? हम श्वास अच्छे से नहीं लेते। आप अच्छे से श्वास लेके देखिए तो आपको हर वो चीज समझ में आ जाएगा, आप भी हैप्पी रहेंगे। अचानक आप में एक एनर्जी आने लगती है कि हाँ यार मुझे ये भी आता है, हाँ मुझे वो भी आता है, ये तो मैं बहुत और भी अच्छा कर सकता था। इसके लिए जो ट्रेनिंग में श्वास का क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूरा श्वास लेना है और पूरा श्वास छोड़ना है। जितना आप इनहेल ले करते हो और उतना आपका ऑक्सीजन इनटेक होता है, उतना आपका ब्लड सेल्स एक्टिवेट होते हैं। जितना ब्लड सेल्स एक्टिवेट होता है उतना हमारा शरीर चुस्त और मन होता है। कि श्वास लेना क्रिया बहुत ही अच्छे से आपको कर लेना चाहिए। सो द ब्रीथिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। और श्वास को कुछ लोग रोकते हैं, श्वास को रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, आप कुछ कंपटीशन कर रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, उस वक्त श्वास लेकर के 5 सेकंड रुक करके फिर श्वास छोड़ना होता है। आप कुछ काम कर रहे हो उस वक्त श्वास नाक से लेना है, नाक और मुंह से श्वास को छोड़ना है। जैसे अच्छा। हम फूंक मारते हैं, जो नाक और मुंह से श्वास थके हुए है तो नाक और मुंह से श्वास को छोड़ना है
1: जी।
0: लेना है सिर्फ नाक से और आराम से लेना है, ये कभी नहीं करना है।
1: अच्छा
0: हाँ, जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं वो नहीं करना,
1: वो तो बहुत सारे लोग ऐसे
0: नहीं करना चाहिए वो कर। हाँ, परीक्षण जैसे कपालभाती हम करते हैं,
1: हाँ।
0: जो अनुलोम विलोम वगैरह करते हैं वो नोस्ट्रल क्लीन करने के लिए ठीक है,
1: लेकिन अमूमन नहीं
0: करना चाहिए, नॉर्मल ब्रीथिंग करना चाहिए। जानवर को कभी आपने देखे नहीं हो, वो भी हमारे साथ ही पैदा हुए, वो भी हमारे साथ ही जाएंगे, तो वो तो कभी अनुलोम विलोम नहीं करते, वो तो कभी कपालभाती नहीं करते, वो तो कभी योगा नहीं करते, फिर भी अच्छा जी लेते। तो मैटर ये बनता है, हम ह्यूमंस थोड़ा एडवांस हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जाके हम कुछ एक्स्ट्रा कर लेते हैं, बट योगिक क्रिया इज अलग है। जब योग परीक्षक जो होते हैं वो सिखाते वो अलग चीज होते हैं, बिकॉज आपका सिस्टम और एनहांस कर देते हैं उसके अंदर, और आपको अच्छे से जीने का कला आ जाता है। इसके लिए अच्छे से इंस्ट्रक्टर के अंदर अगर आप सीखेंगे, आपको पूरा जिसके पास नॉलेज है उनके अंडर में सीखना जरूरी होता है, कुछ भी करना नहीं होता है। सो ब्रीथिंग इज ए वेरी सिंपल टेक्निक, श्वास अच्छे से अंदर लेना है, श्वास अच्छे से आपको बाहर छोड़ना जरूरी है। तब जाकर के 4 पॉइंट होता है, यानी कि आपको पानी पीने के लिए आना चाहिए, खाना खाना आना चाहिए, नींद सही तरीके से आना चाहिए,
1: सांस
0: अच्छे से लेने आना चाहिए, तो 4 हो गया प्लस 1 परिश्रम, वो इज इक्वल टू करेंगे तो 100 साल की जिंदगी आपका सही है।
1: अच्छा।
0: और कोई चीज तो है नहीं है, कुदरत ने तो एक ही चीज बोला कि भाई आपको ये शरीर मैं दे रहा हूं एज ए बाड़े के तौर पर, मुझे इतना देना है आपको रिटर्न में क्या देना है, पानी, खाना, नींद, हवा और मेहनत। अब मेहनत कैसा करना है, मेहनत मतलब बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है, तो जो थोड़ा बहुत परिश्रम जो सिर्फ 4% देना है, 4% मेहनत देना है, तो 4% में क्या क्या आएगा, आप थोड़ा सा झुकेंगे, आपका जो कोणी जो एल्बो जो होते हैं ना ये कान से ऊपर जाना चाहिए कम से कम दिन में 100 बार कोई भी हालत में, आप बैठे बैठे

0: भी कर सकते हैं, कोई डब्बा ऊपर रख रहे हो आप, कुछ भी कर रहे हो, कहे थोड़ा एक बार ऐसा कर लिया, एक बार ऐसा कर लिया, हो गया दो हो गया, फिर घर में थोड़ा अंगड़ाई लिया दो तीन बार, पांच छह काउंट में हो गया, कभी हाथ कोई भी कारण आपको उठाते रहना चाहिए, तो भी आपका शोल्डर अच्छा हो जाएगा, थोड़ा नेक को मोमेंटम देना है अच्छे से, एक बजे वो बजे देखना, ये बजे देखना है, ऊपर देखना है, नीचे देखना है, आपका C1 C2 ये पर सर्वाइकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर लिया, थोड़ा इधर से कुछ गिरा उठा लिया, इधर से गिरा कुछ उठा लिया, या अगर जैसे झाड़ू पोछा कटका लगाते हैं हम घर में, उसमें भी एक्सरसाइज हो जाता है, कुछ वजन उठा करके ऊपर रख दिया, कुछ ऊपर से लेके नीचे रख दिया, या आप थोड़ा सा चल लिए, हम एक ही घंटा चलते हैं, सिर्फ चलना एक्सरसाइज नहीं, चलना तो एक इंग्रेडिएंट है, आप एक पाव भाजी बना रहे हैं उसके अंदर 50 मसाला डाल रहे तो वॉक एक मसाला है, अभी भी 25 मसाला बाकी रहता है, तो उसमें एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग्स उठक बैठक वजन उठाना रखना ये पूरा करना जरूरी है। इसके लिए कैलकुलेटेड एक्सरसाइज प्रोग्राम वेलनेस मैनेजमेंट में आता है कि कितना वजन उठाना चाहिए, कितना वजन रखना चाहिए, कैसा उठाना चाहिए, कैसा स्ट्रेचिंग करना चाहिए, कैसा बैठना चाहिए, कैसा उठना चाहिए, कैसा चलना चाहिए, ये पूरा थोड़ा बहुत अच्छे से सिखाया जाता है, कुछ माहौल बनता है, एरिया बनता है, इसके लिए एक जगह जाकर के सीखने से अच्छा लगता है। आप घर में भी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो, यानी कि 4% आपको मेहनत तो करना है, जैसे कुएं से पानी निकालना, पेड़ चढ़ना, ओके, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नारियल पानी पीना है तो फिर आप पेड़ भी चढ़ना जरूरी होता है,
1: क्या बात है,
0: नहीं तो आप पानी पीने के लायक ही नहीं है, क्योंकि कुदरत ये बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर कोई पेड़ तो नहीं चढ़ सकते, टेक्निक तो हम तो आता नहीं है, फिर भी नारियल पानी तो पीना है, पीना है तो ठीक है, आप 1 किलो चल के आकर के फिर पानी पियो, आप गाड़ी पे आए, गाड़ी से नीचे उतरेंगे नहीं, बैठे बैठे अपना नारियल पिया और निकल गया, तो वो कोई काम का नहीं, वो अंदर जाकर के गैस ही करेगा, तो इसका मतलब आप आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर साइकिलिंग करके आए, चल के आए, एक नारियल पानी पीते हो, वो उसका काम करेगा,
1: फायदा है।
0: दैट मीन्स क्या है कि मेहनत के सामने आपको उसका रिजल्ट आता है,
1: जी,
0: आप मेहनत नहीं करेंगे फिर भी आप खाते जाएंगे पीते जाएंगे तो फिर आपको रिजल्ट आने वाला नहीं, इसके लिए मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 4+1=100, 100 साल की जिंदगी पूरा होता है, सो दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये अगर इंसान समझ गया तो कभी भी उनको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं।
1: बिल्कुल, आप डॉक्टर साहब 100 साल की जिंदगी की बात कर रहे हैं और आपका ये कहना है कि वृद्धावस्था में भी युवा रहा जा सकता है, वो क्या नुस्खा है जरा बताइए, क्योंकि अभी तो कॉम्पिटिशन सा बना हुआ है कि हम कैसे लंबे समय तक युवा बने रहे, और देखने में तो सभी को लगता है कि आज तो सेल्फी का जमाना है, तो सभी चाहते हैं कि युवा बने सेल्फी लें, तो बताइए ये जरा नुस्खे बताइए।
0: एक तो मैं आपके सामने बैठा हूँ तो आपने मेरा तो एज तो आपने देख लिया, मैं ट्रेन में भी अगर आता हूँ तो मुझे सीनियर सिटीजन का दर्जा है
1: जी।
0: फिर भी मुझे अगर वो जगह मुझे मिली है तो 40-50 साल के जो होते हैं, जो वृद्धावस्था में दिखते हैं, वो हमारी तरफ देख करके गुस्सा करते हैं, आप इतने यंग है तो आप सीनियर सिटीजन में कैसे बैठे,
1: झूठ बोल रहे हैं।
0: ओके, तो ये हमने बहुत फेस किया हुआ है, तो रियलिटी है कि भाई आपको यंग एट हार्ट, एज इज जस्ट अ नंबर, वो एक नंबर होता है, आप इतने साल के हो, इतना साल पैदा होकर के मेरे इतना साल हो गया, मगर वो दिखना जरूरी नहीं, बुढ़ापा बीमारी बोलते हैं हम इसको, बुढ़ापा नहीं चाहिए हमें, उम्र भले उनका 90 साल क्यों ना हो, अब यू शुड लुक एंड यू शुड लिव यंग, वो कैसा पॉसिबल है, यही फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कैसा है, आपको हर आधे घंटे में पानी पीना है। देखिए कितना भी आप मेरे को क्वेश्चन करेंगे, हम घूम फिर के वहीं पर ही आते हैं, तो अल्टीमेटली ये एक बात होती है कि पानी हर आधे घंटे में इंसान को पीना है
1: जी,
0: प्यास लगे या नहीं लगे, हर आधे घंटे में पानी पीना चाहिए, और खाना 3 साथ में नहीं खाना चाहिए, कौन सा, रॉ कुक्ड और फ्राइड, ये तीनों एक साथ में नहीं खाना चाहिए। फिर आता है नींद, 24 घंटे में एक ही बार सोना चाहिए, रात को 9-10 बजे सो जाना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो उसके बाद आपका पास 2-3 घंटा एक्स्ट्रा टाइम होता है, उस टाइम में आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत ही दुनिया का रिच इंसान बन जाएंगे आप हेल्थ वाइज और फाइनेंस वाइज, बिकॉज आपके पास एडवांस टाइम रहता है, नहीं तो लेट उठ के भाग दौड़ करते हैं, उसके बाद पूरा दिन उनका बहुत खराब जाता है। इसके लिए जल्दी सोना का अगर प्रैक्टिस कर लिया आप, दिया तो 24 घंटा ही है, आप 12 बजे सोते हैं फिर लेट उठते हैं, वो नहीं, आप वही चीज को जल्दी जल्दी करो, 2 घंटा एडवांस रहो, तो आपका वो सर्कल आप अच्छे से, यानी कि अच्छे से सोना बहुत जरूरी है। नींद है आपका बेस है, पूंजी बोलते हैं उसको, FD बोलते हैं हम अपना भाषा में, नींद आपका FD है, उससे इंटरेस्ट मिलती है, उससे इंटरेस्ट से आपका 16 घंटा चलता है। अगर आपने अपना FD तोड़ दिया
1: जी,
0: मान लीजिए कि आपका नींद 1 लाख रुपया का है, तो आपका FD है, आपने उसमें से 50,000 खर्चा कर लिया आपने, उसका इंटरेस्ट जो आता है कम आता है, आपका 16 घंटा नहीं चलेगा, आप समझे ना। तो क्या होता है कि भाई FD को तोड़ना नहीं है, FD को फिक्स रखो आप, उसको और अच्छे से उसको एनहांस करो, तो उससे जो इंटरेस्ट आता है उससे हमें जीना है। तो हमको एफडी को बिल्कुल छेड़ना नहीं है, तो ये जो स्लीप को ज्यादा छेड़ना नहीं, हमें 16 घंटा का हमारा जो पिरामिड बनता है

0: है, 8 घंटा हैप्पीनेस होता है, हैप्पीनेस हेल्थ एंड उसका जो होता है ना दैट इज अ स्लीप बनता है। वो जो 8 घंटे का स्लीप के ऊपर आपका पिरामिड बना हुआ है, दैट मीन्स 8 आवर्स का 16 घंटा डिवाइड होता है, जो वो जो 16 घंटा जो बैठा है आपका 8 घंटे का नींद पर। सो वो नींद आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका ये पिरामिड बहुत अच्छा बन जाता है। हेल्थ, हैप्पीनेस और होप बोलते हैं। आप सुबह उठेंगे वो फुली उठेंगे, आप जैसे उठते हो तो आप कुदरत को शुक्रिया अदा बोलो उठाने के लिए, और 16 घंटा अगर आपका अच्छा गया है तो रात को वापस थैंक यू बोल के सो जाओ कि आज का दिन मेरा 16 घंटा बहुत अच्छे से गया। यानी इंसान को जीना है सिर्फ 16 घंटा, 8 घंटा आपको नींद पे निकालना है। तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है अपने को।
1: बहुत बढ़िया बात आपने बताई है। और डॉक्टर राज, आप फिटनेस एक्सपर्ट हैं, तो हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपकी बातों से बहुत सारे लोग इस समय प्रेरित हो रहे होंगे, तो आपने कौन सी डिग्री हासिल की है? अगर हमारे श्रोता भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, अपने को फिट फाट रखना चाहते हैं, तो क्या पढ़ाई करें और किस तरह से आए?
0: देखिए, पढ़ाई तो नॉर्मल रूटीन में होता है कि कोई अनपढ़ भी होना जो भी वो फिटनेस एक्सपर्ट बन सकता है, बिकॉज एक्सपीरियंस बहुत बड़ा काम आता है।
1: लेकिन आपने पीएचडी?
0: मैंने पीएचडी किया अल्टरनेटिव मेडिसिन में, और उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मैंने वेलनेस में किया हुआ है, जो अपोलो हॉस्पिटल होता है वो ऑर्गेनाइज करता है। उसके अलावा भी हमने बहुत ज्यादा जो छोटे छोटे जो कैंप्स होते हैं, जो 1 मंथ का होता है, 2 मंथ का होता है, जो छोटे छोटे जो होता है, जो एक्सपर्ट के अंडर शारीरिक तौर पर किसी और का काम करते हैं, तो आपके पास वो आवड़त जिसको बोलते हैं ना, जो आपका वो आना जरूरी है, यू हैव टू बी एक्सपर्ट। तो इसके लिए हमको अयर जो हमसे ज्यादा नॉलेज वाले से आपको सीखना जरूरी होता है। फिर भी इसका डिग्रीज होते हैं, आपको जब वेलनेस होता है, फिजिकल एजुकेशन होता है, उसके अलावा योग परीक्षण केंद्र होता है, बहुत जगह पर है, जैसे बेंगलोर में विवेकानंद इंस्टीट्यूट है, उत्तराखंड में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत जगह पर कॉलेजेस पूरा खुली हुई है, नेट में बहुत सारा मिल जाता है, इंटरनेशनल वेलनेस भी होता है
1: जी।
0: बहुत जगह पर वेलनेस में ट्रेनिंग में आना चाहते हो तो मिलता है आपको, यूनिवर्सिटीज उसका डिग्रीज देती है
1: जी।
0: योगा डिग्री भी होता है
1: जी,
0: तो कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील
1: जी,
0: बट पैशन होना जरूरी है।
1: हाँ।
0: सिर्फ डिग्री होने से कुछ नहीं होता है, आपको पैशन होना जरूरी है। इसके लिए मैं अगर इस फील्ड में हूं तो मैं बचपन से हूं, मैं 12 साल का था मैं ब्लैक बेल्ट हूं, आज मेरा 63 ईयर्स हूं, आज की तारीख में भी मैं क्लासेस लेता हूं, मेरा सूरत में क्लासेस चलती है, आयु फिटनेस वेलनेस मैनेजमेंट करके मेरा ऑर्गेनाइजेशन है WAYU, तो इसमें हमारा डेली रूटीन चलता है। उसके अलावा भी ऑनलाइन में भी मैं परीक्षण करता हूँ, तो हम एग्जाम भी कंडक्ट करते हैं
1: जी, जी।
0: तो ये बात भी है
1: जी। तो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, जो जुड़ना चाहेंगे आपसे जुड़ भी सकते हैं और ऐसी कोई डिग्री हासिल कर सकते हैं। अब छोटे छोटे बहुत संक्षेप में आप बताइए, कुछ छोटे सवाल छोटे जवाब
0: जी।
1: तो
0: जी।
1: हम सब तो आवास की दुनिया में काम करते हैं, तो जो आवास की दुनिया में काम करते हैं उनके लिए पानी कितना और कैसे पीना चाहिए, बहुत संक्षेप में बताइए।
0: जी जी, एक तो पहली बात तो माइक्रोफोन जो होता है ये आपका मॉइस्चर को खींचता है, ये जो माइक्रोफोन, ओके, तो फिर नेचुरली आपके पास तो पानी होना जरूरी है, और पानी को डायरेक्ट नहीं पीना है, पानी मुंह में रखना है, रखने के बाद 5 सेकंड 10 सेकंड रखने के बाद वो पानी को टिप्पा टिप्पा निकलना है।
1: अच्छा।
0: एक साथ में गल्प नहीं करना है, और पॉइंट वाइज आपको निकलना है, गला मॉइस्चर रखना है ऑल द टाइम, ये तो मॉइस्चर रखना है। दूसरा क्या होता है कि गुनगुना गर्म पानी में थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी सी ज्यादा नहीं हल्दी, और थोड़ा सा प्योर घी अथवा कोकोनट ऑयल थोड़ा सा डाल के आपको गले में रखना है। रखने के बाद उसको
1: पानी में या दूध में?
0: पानी में,
1: ओके,
0: सिर्फ पानी में। हाँ। उसको रख के थोड़ा सा आप अंदर डालेंगे तो क्या होता है कि आपका ये गला मॉइस्चर रहेगा, और वहां पे जो थोड़ा बहुत डैमेज होगा वो हील हो जाएगा। और उसके अलावा भी छोटी छोटी काम, और जैसे कि आकार का बोलना जरूरी होता है, दैट इज अ नॉर्मल रूटीन, आकार उकार मकार में आकार जो होता है ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: अच्छा,
0: गल्प करते रहना चाहिए।
1: हाँ।
0: बार बार आपको मुंह में सलाइवा लाना है, ऐसा टंग से मुंह में रोल करने के बाद मुंह में सलाइवा आता है, सलाइवा को गल्प करना चाहिए। गल्प करो, ये बिल्कुल मॉइस्चर हो जाएगा, वापस फ्री हो जाएगा आपका गला।
1: क्या बात है भाई। तो जो लोग वॉइसिंग डबिंग में काम करते हैं
0: उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट,
1: ये बड़ी कारगर बात बताई। तो ये आपने बताया कि अकार, तो अकार कितने सेकंड करना चाहिए, और मकार क्या है वो क्या बताया?
0: अकार उकार मकार से ओमकार बनी हुई है, ओमकार इज नॉट ओ एम, इट इज आ ऊ म ए यू एम, अकार उकार मकार होता है, तो वो बोलने का तरीका होता है जब आप मकार डालते हो तो आपका जो टंग जो है ना ऊपर पैलेट पर टच होना चाहिए, बाकी कुदरत ने दिया हुआ साउंड है, आप अगर अंतरिक्ष का साउंड देखेंगे तो ओमकार ही आता है,
1: जी,
0: बट वो ओम नहीं है, वो एम नहीं, वो आ ऊ म, आप बराबर कान डाल के सुनेंगे तो यही आवाज करेगा, यानी कि मुंह खुला, उकार पे आ गया, मुंह

0: पन के टंग ऊपर गया तो वो मकार पे आ जाता है
1: जी जी।
0: तो ये मकार इस कुंभक होता है।
1: अभी हमारे श्रोताओं के लिए बताइए कि बिना किसी महंगे उपकरण के जिम जाने के अलावा घर पे बैठे बैठे वो कौन सी एक्सरसाइज है जो कर सकते हैं हमारे श्रोता, बहुत संक्षेप में बताइए।
0: देखिए बहुत सिंपल है, कोई भी मिनरल वाटर बॉटल होता है वो एक एक लीटर का दो, या उसमें पानी खाली करके उसके अंदर सैंड भर देने का होता है, दो किलो का हो जाता है
1: जी जी।
0: आप सैंड भर देंगे ऐसा पांच छह बॉटल रख देने का, दो किलो का एक रखने का, एक किलो के एक ना, आधा किलो के एक रखने का, कुछ ने खाली उसको उठा करके नीचे रखना होता है,
1: उससे हाथ की एक्सरसाइज
0: हो जाती है
1: जी।
0: ओके, आप वो लेकर के उठक बैठक कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का टाइम ऐसा है, आप कोई भी यूट्यूब में या फिर कोई भी डाल दो तो आपको 15 मिनट का, 20 मिनट का, 25 मिनट का एक्सरसाइज तो दिखाई देता है। फिर भी हरेक को पुशअप्स आना चाहिए, स्क्वाट करना आना चाहिए, अपरेजिंग यानी कि दोनों हाथ को सर के ऊपर लेकर के आसमान की तरफ अपने आप को खींचना चाहिए। दिन में 25-50 बार ऐसा करते रहेंगे, सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। और रही शॉवर लेने की लोगों को बहुत आदत है, शॉवर के नीचे आके खड़े हो जाते हैं, वो नहीं करना चाहिए। आप बैठ के नहाना चाहिए, बाल्टी से पानी लेकर के नहाना सबसे अच्छा होता है। खड़े खड़े जो नहाते हैं ना वो सही नहीं होता है। और रोज साबुन लगाने की जरूरत नहीं होती है
1: जी जी।
0: साबुन आपको वीक में एक या दो ही बार लगाना होता है, और सिर्फ हाथ में हथेली। लोग बहुत साबुन लगाते हैं, बहुत शैम्पू लगाते हैं, बहुत यू नो कंडीशनर लगाते हैं, नेसेसिटी नहीं होती है। स्किन का मॉइस्चर भी निकल जाता है उससे, बहुत ज्यादा क्रीम्स वगैरह जो लगाते हैं वो भी नहीं लगाना चाहिए, यानी कि वो खून चूस लेता है, यानी कि अंदर चले जाता है। तो जो कुछ भी हम खा सकते हैं, जो हम खाते हैं वो हमको स्किन में लगाना है। आप जो चीज नहीं खाते हैं वो स्किन में लगाएंगे वो क्या होगा, वो सीधा पोर्स के अंदर जाकर के ब्लड के साथ अंदर जाकर इंटरफेयर करता है। इसलिए पर छोटी छोटी बातें याद रखना जरूरी है।
1: और फिटनेस के जरिए क्या दर्द में भी राहत मिल सकती है? बहुत सारे लोगों को तकलीफें होती
0: है, नी का इश्यूज है बहुत लोगों को, एंकल का इश्यूज है, सर्वाइकल प्रॉब्लम होता है। रिहेबिलिटेशन हम करते हैं जिनको जो तकलीफ है, स्लीप एपनिया होता है या फिर अल्जाइमर होता है या फिर बहुत सारे ऐसे जो तकलीफ से ये करते हैं कि उनके लिए वो आते हैं तो एक्सरसाइज उनके हिसाब से होता है। सो बैठे बैठे पांव को थोड़ा सा लंबा करना
1: जी,
0: या फिर यू नो नेक का एक्सरसाइज करना, इन चीजों से बहुत उनको इजाज़त मिल जाती है। लेकिन सही तरीके से वेलनेस मैनेजमेंट में आते हैं, सीखते हैं तो उनको 100% रिजल्ट मिलता है। मेरे पास दिन में 100 जन आते हैं
1: जी,
0: और सभी बाहर से भी आते हैं, वो बहुत अच्छे होके जाते हैं। तो 3-4 दिन का उनका रूटीन होता है, एक दिन का रूटीन होता है, वही 2-3 घंटे भी आके सीख के जाते तो उनको रिजल्ट मिलता ही है
1: जी। बढ़िया बात, आपने बहुत सारी बातें बताई है। और बस एक लाइन में हमें जवाब दीजिए, वो ये कि 5 तत्व की आपने बात की, जहां वायु, आकाश, पृथ्वी, जल और अग्नि, तो ये 5 तत्वों के माध्यम से आज के आधुनिक जीवन शैली में इनका कितना महत्व है और क्या संभव है ये?
0: नहीं, आधुनिक बोलिए या कोई भी एंशियंट, यानी कि माँ तो माँ ही होती है, माँ का गर्भ से अगर आए तो इसमें आधुनिक भी नहीं चलता है या फिर ये भी नहीं चलता, माँ माँ ही होती है, बाप बाप ही होते हैं। तो माँ तो ये बनता है कि आप कितना भी बड़े क्यों ना हो, आप 100 साल से ज्यादा नहीं जी सकते। ओके, आप उससे नीचे ही रहेंगे। बट हमें कुदरत ने हमको दिया है तो एज ए चैलेंज आप उसको करके जाओ, नहीं तो हमको वापस आना पड़ेगा। ओके, फिर हमको अच्छा शरीर नहीं मिलेगा। कितना योनि पसार होने के बाद हमको ये शरीर मिला, अच्छा शरीर मिला है तो उसे अच्छे से जी के जाना है, अपने को दुनिया को कुछ दे के जाना है, समझा के जाना है। तो हमें इसे वेस्ट नहीं करना है, जी लो आधुनिक या युग हो कोई भी युग में, आपको अच्छे जीने के लिए 5 तत्वों से अगर आए हैं तो आपको 5 तत्वों का जो नियम है, कानून है, वो कानून के हिसाब से जीना पड़ेगा। दैट मीन्स हर आधे घंटे में पानी पीना है, हर 3-4 घंटे में खाना खाना है, 8 घंटे का नींद करना है, और 1 मिनट में 10-15 बार श्वास अंदर बाहर लेना है, और दिन में कम से कम आपको आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक परिश्रम करना है, जिसमें आपको थोड़ा कैलोरी बर्न हो, दिन में 2-3 हजार कैलोरी बर्न हो जाए। अब उतना नहीं होता है, बहुत मुश्किल है, कम से कम 800-900 कैलोरी बर्न करने की कोशिश करना चाहिए, जिंदगी अच्छे से निभा सकते
1: जी। डॉक्टर राज, आपने पूरे प्रोग्राम के दौरान इतनी बार पानी पीने के लिए कहा है और इतने सही तरीके से नींद प्रॉपर लेने के लिए कहा है, जो कि कम हो रही नींद आजकल, और न्यूट्रिशन की ओर इतनी बार इशारा किया है, ध्यान देने को बोला है, तो हमारे श्रोता जरूर आज सजग हो जाएंगे इस ओर। अब चलते चलते बताइए कि इसी में हम गाने को भी शामिल कर लेते, संगीत भी एक माध्यम है जिससे सुकून मिलता है, कौन सा गाना आपकी ओर से हम नजर करें अपने श्रोताओं?
0: इस वक्त मुझे क्या रहा है तो मैं बोला है, सुन लो मेरी बात गम छोड़ के, गाने में बहुत एनर्जी है, और आई थिंक ये हेलन जी उसमें डांस
1: मस्ती से जीने की बात
0: है, तो वो गाना मेरा फेवरेट है ऑल द टाइम, सो आई थिंक श्रोता भी बहुत एंजॉय करेंगे
1: जी, सुनते हैं।

0: डॉक्टर राज, बहुत सारी जानकारी दी आपने, आपका तहे दिल से शुक्रिया विविध भारती परिवार की ओर से।
1: थैंक यू वेरी मच कॉलिंग मी हियर एंड आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आप लोग सब अच्छे रहिए, ठीक रहिए एंड खुश रहिए, 100 साल जिंदगी पूरा कीजिए।
0: क्या बात,
1: खुशी खुशी।
0: शुक्रिया शुक्रिया, नमस्कार
1: नमस्कार।
2: ये थी वेलनेस गुरु डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से ममता सिंह की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा रिली। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं महान फिल्मकार गुरुदत्त को और महान गजल सम्राट जगजीत सिंह को।
1: दिल से मिला ले दिल मेरा प्यार।

0: मेरा बेवफा।
1: सुन सुन सुन सुन जालिमा,
0: अरे जा जा जा जा,
1: अरे सुन सुन सुन सुन
0: जा जा जा जा,
1: सुन सुन।
2: आवाजें थी गीता दत्त और मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम था आर पार। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे ओपी नैयर।
3: मेरी दुनिया

मिस्टर एंड मिसेस 55। इसे मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा था और धुन ओपी नैयर की थी।

हेमंत कुमार की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म प्यासा का गीत। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीतकार थे सचिन देव बर्मन। और अब लेते हैं एक अंतराल।

0: गीता दत्त की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म कागज के फूल फिल्म का गाना। गीतकार थे कैफी आजमी और संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: हम सब ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं। दहशत अभी
2: 100% भी नहीं होती है।
1: ICU में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
2: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के डॉक्टर।
1: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध।
0: और आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है 14वीं का चांद। आवाज मोहम्मद रफी की, शब्दकार शकील बदायूं ने

0: मोहम्मद रफी को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था चौदहवीं का चांद।
1: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
2: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
1: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
2: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो और आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
1: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
0: और अब रवि का संगीत, राजेंद्र कृष्ण के बोल, आवाज लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम भरोसा।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत श्री रामचंद्र का संगीत है, साहिर लुधियानवी के बोल, आवाज लता मंगेशकर की है। फिल्म का नाम है बहू रानी।

फिल्म बहुरानी का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज लता मंगेशकर की थी। कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम है साहेब बीबी और गुलाम। इसे शकील बदायूनी ने लिखा है और धुन हेमंत कुमार की है।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने नहीं सुनी। दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवीएफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार। अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है, तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर और हेमंत कुमार को अभी अपनी फिल्म जाल में सुना। इसे साहिर लुधियानवी ने लिखा था।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवीएफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार। अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: यादों की महफिल में अब सुनिए कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी के बोल, आवाज जगजीत सिंह की, और ये फिल्म है अर्थ।

0: बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।

0: वो हैं हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
3: ये आवाजें हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की, फिल्म का नाम है साथ साथ।

0: जावेद अख्तर का लिखा गीत आपने सुना, स्वर जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के थे, फिल्म का नाम था साथ साथ।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: संगीतकार उत्तम सिंह,
1: मुझको हुई ना खबर,
0: एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं इंदिवर की रचना, जगजीत सिंह का संगीत, फिल्म का नाम है प्रेम गीत और स्वर जगजीत सिंह का ही है।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आपका सुरीला सफर इस कार्यक्रम में। तो आज का हमारा सफर उन पंछियों के नाम है जो मौसम के साथ हजारों मील की यात्रा करते हैं, है ना? नए आसमान, नई दिशाएं और मंजिल की तलाश करते हैं। तो इनकी उड़ान हमें भी कुछ सोचने का मौका देती है, संदेश देती है। तो आइए, पंखों के साथ कल्पनाओं को भी हम उड़ान दें और सुने आज का ये सुरीला सफर। चलिए पहले आज की इबारत पढ़ देते हैं। जरा कल्पना कीजिए, आसमान में पंछियों का एक झुंड हजारों मील दूर की यात्रा पर निकला है। ना उनके हाथ में कोई नक्शा है, ना रास्ते में कोई मील का पत्थर, फिर भी प्रकृति की अदृश्य दिशा को पहचानते हुए वो आगे बढ़ते हैं। मौसम बदलता है, हवाएं बदलती हैं, धरती के रंग बदलते हैं, लेकिन उनकी यात्रा जारी रहती है। इन प्रवासी पंछियों को देखकर एक सवाल मन में उठता है, क्या सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का नाम है? यह सफर अपने भीतर कुछ नया खोजने का नाम भी है? हम इंसान भी तो ऐसे ही मुसाफिर हैं। कभी रोजगार हमें घर से दूर ले जाता है, कभी रिश्ते, कभी जिम्मेदारियां और कभी अपने सपने। हम भी अपने जीवन में कई बार ऐसी उड़ान भरते हैं जहां मंजिलों का पता तो होता है लेकिन रास्तों की मुश्किलों का अंदाजा नहीं होता। तो प्रवासी पंछी हम सभी को बात सिखाते हैं, दूर जाना पर अपनी जड़ों को भूलना नहीं। मौसम अनुकूल होने पर ही लौटते हैं अपने लिए परिचित ठिकानों की ओर। शायद इसीलिए उनकी उड़ान में केवल बिछो नहीं होता, लौटने की उम्मीद भी छिपी होती है। जब इन पंछियों को देखकर हमारा मन भी उड़ान भरता है तो संगीत उस उड़ान को आवाज दे देता है, है ना? तो आइए आज सुरीला सफर में पंखों की सरसराहट सुने, खुले आसमान का विस्तार महसूस करें और उन गीतों के साथ उड़ चलें जो हमें याद दिलाते हैं कि आसमान सिर्फ पंछियों के लिए नहीं, सपने देखने वालों के लिए भी खुला है।

लता मंगेशकर और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म का नाम था चोरी चोरी। गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीत शंकर जयकिशन का था। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज 10 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। ये साल में एक दिन दो बार 9 मई और साल में ये दिन दो बार 9 मई और 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि प्रवासी पक्षी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर प्रवास करते हैं। इस दिन का मुख्य उद्देश्य प्रवासी पक्षियों, उनके संरक्षण और उनके आवास स्थलों को बचाने के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाना है। विश्व पक्षी दिवस और बहुत बढ़िया थीम लेकर आप आई हैं, और आज सुरीला सफर में पक्षियों के साथ हम भी नीले अंबर में सुरीले मधुर गीतों के साथ सैर करेंगे। बिल्कुल। और वही एक श्रोता ने लिखा है कि हमारा मन भी कभी कभी उड़ान भरता है, यादों के पंख लगाकर बीते हुए दिनों में पहुंच जाता है, संगीत की धुनों के साथ अनजानी राहों पर निकल जाता है और सपनों के आसमान में विचरने लगता है। उम्र चाहे कितनी भी हो, मन की उड़ान कभी थमती नहीं। आखिर पंछी हो या इंसान, उड़ान ही तो जीवन को नए अर्थ देती है और अपनी जड़ों की ओर लौटने का सुख उस उड़ान को पूर्णता देता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की सुंदर सी इबारत में इसमें प्रवासी पक्षियों की उड़ान, जीवन का सफर, अपनों से बिछड़ना, अपनी जड़ों की ओर लौटना और सपनों को पाने की चाह है। मेरे मायके के नजदीक सांभर झील में सर्दियों में हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। फरवरी मार्च तक रुकते हैं और इसके बाद वापस चले जाते हैं। प्रवासी पक्षी हमें सिखाते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए उड़ान भरना

आई सुनते ही कार्यक्रम का अगला गीत शंकर जयकिशन का संगीत है, शैलेंद्र के बोल, सुबीर सेन की आवाज और फिल्म का नाम है आस का पंछी। अच्छा बताइए, क्या आपने कोई पंछी पाला है? बताइएगा।

0: छूलूंगा आसमां को बढ़कर, नहीं तो रुक ना सकेगा दुनिया के रास्तों पे चलकर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी।
1: हमारे श्रोता ने लिखा है कि दिल मेरा एक आस का पंछी, यानी इस फिल्म में राजेंद्र कुमार थे। वहीं एक श्रोता लिख रही है कि पंछी बनू उड़ती फिरू मस्त गगन में भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग का एक ऐसा सदाबहार गीत है जो आज भी श्रोताओं को ऊर्जा और खुशी से भर देता है, और ये गीत आजादी, उल्लास और बेफिक्री का एक खूबसूरत प्रतीक है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि एक गाना है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, जीवन जीने और रोजगार की तलाश में अपनी उड़ान भरता है और सफल होता है, यही हमें पक्षियों से सीखना।

चाहिए बिल्कुल। और वहीं एक श्रोता लिख रही हैं कि मेरे पतिदेव ने भी मुझे आजाद होकर उड़ने की इजाजत दी है क्योंकि मैं भी अपना बिजनेस करती हूं और वो मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। और इसी तरह हर एक को अपने जीवन साथी को आजादी देनी चाहिए, जो सही आजादी होती है उसे देना चाहिए ताकि अपनी उड़ान हर इंसान भर सके। वहीं बहुत सारे श्रोताओं ने आज के इस गीत को पसंद किया है और लिखते हैं कि बात है लेकिन जब सेवा में कार्यरत थे तब घर की और ऑफिस की जिम्मेदारी के कारण मस्त गगन में उड़ने का मौका कम मिला। अब जब सेवा निवृत्त होने के बाद नौकरी से आजाद हुए लेकिन उम्र बढ़ने के साथ अब शरीर साथ नहीं दे रहा। उड़ने का मन जरूर होता है लेकिन पंख सिकोड़ कर बैठ जाना पड़ता है, फिर भी मन को मजबूत बनाकर जरूर उड़ा जा सकता है। इस बात पर एक मुहावरा इन्होंने लिखा है, मन होए तो मालवे जवाई। ये गुजराती मुहावरा है, मतलब मन करे तो हम कहीं भी जा सकते हैं। रूबरू न सही विविध भारती की प्रसारण तरंग रूपी पंख लगाकर। बहुत सुंदर लिखा है अपनी छोटी बहन यानी मैं के संग जब सुरीली उड़ान भरेंगे तब मेरे मन का बावरा पंछी बार बार जरूर डोले लगेगा। बिल्कुल, इस वक्त आप मेरे साथ ही हैं और हम हवा में उड़ रहे हैं, है ना? महसूस किया आपने? जी हाँ, हम अभी हवा में उड़ ही रहे हैं। आइए सुनते हैं अगला गीत। अरे इससे पहले तो गाना आपसे सवाल पूछना था, चलिए सवाल पूछती हूँ। हाँ, एक सवाल तो मैंने लगे हाथों पूछ ही लिया था यूं ही कि आपने कोई पंछी पाला है तो बताइए। हाँ, जो मेरे दो सवाल हमेशा रहते हैं वो पहला सवाल ये है कि अगर आपको किसी भी पंछी की तरह खुले आसमान में उड़ने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? बताइए कहाँ जाना चाहेंगे उड़कर। और अगर थोड़ा सा गहराई से सोचेंगे तो ये भी बता दीजिएगा कि क्यों जाना चाहेंगे वहां। सवाल फिर से नोट कर लीजिए, अगर आपको भी किसी पंछी की तरह खुले आसमान में उड़ने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे और क्यों? और हमारा दूसरा सवाल है कि पंछी तो आसमान की सीमाएं पार कर जाते हैं, है ना, लेकिन क्या इंसान अपने मन में जो खींची हुई सीमाएं हैं उन्हें पार कर पाता है या नहीं? आपने अपने जीवन में अपने मन में जो सीमाएं पाल ली है, सीमा रेखा खींच दी है, उसे आप पार कर पाते हैं कभी? बताइएगा। तो सवालों के जवाब का हम इंतजार करते हैं और सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है बाबुल, स्वर लता मंगेशकर का, गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद साहब।

हमारे श्रोता ने हमारे सवाल का जवाब लिखा है। लिखते हैं कि हमें अगर उड़ने का मौका मिला तो हम यूरोप जाना चाहेंगे। अच्छा क्यों, ये तो आपने नहीं बताया, ये भी बताइए क्यों जाना चाहेंगे। और एक श्रोता लिखते हैं कि अगर हमको कभी उड़ने का मौका मिले तो मैं दूर से ये देखना चाहूंगा कि मेरी इस सफलता से कितने लोग खुश हैं और कितने दुखी। अरे आप फिर भी वो जो मानव का स्वभाव है उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। हाँ, आप ये देखना पसंद करेंगे कि भाई मैं उड़ रहा हूँ तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, दुखी है मेरे इस उड़ान से। नहीं नहीं, आपको सिर्फ उड़ान भरनी है और निकल जाना है दूर, बहुत दूर, तभी तो मजा है उस उड़ान का, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि प्रभात में पक्षियों की मधुर कलरव की मीठी मधुर आवाज से गगन पर विहार करते सुनाई देती है तो मीठी नींद से जागाती है। मैं हाल सूरत पर हूँ पर एक साल में 3 बार राजस्थान के हिंडौन सिटी के ग्रामीण इलाके में करीब 5 महीने रहा हूँ। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक गांव में रहा। खेत खलिहानों में मोर मोरनिया पक्षी बहुत आते हैं। हम दाना पानी मीठी नमकीन चना बिछाकर रखते तो कुछ देर बाद वो आते हैं, अपने आप मन हो तब दाना रोटी नमकीन खाते हैं और हम उन पक्षियों को खाते हुए मधुर आवाजों से करीबी से सुनते भी हैं और मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। बहुत भाग्यशाली हैं आप अगर आप ऐसा करते हैं, बहुत अच्छा समय निकालते हैं। वहीं एक श्रोता लिखती है कि बिहार में सर्दियों के दौरान साइबेरिया, यूरोप, मध्य एशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे दूर दराज के देशों से हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं और इनके ठहरने के लिए बिहार में कई प्रमुख आर्द्रभूमि झीलें और पक्षी अभयारण्य हैं। और आपने लिखा है जमुई जिला झाझा, ये बिहार का सबसे प्रमुख और लोकप्रिय स्थल है जिसे रामसर साइट का दर्जा भी प्राप्त है। यहाँ साइबेरिया और अन्य देशों से बड़ी संख्या में पक्षी आते हैं। उदयपुर झील जहाँ पश्चिमी चंपारण जिला है, राजगीर की पहाड़ियां, नालंदा जिला, राजगीर की पहाड़ियों और जंगल के यूरोप और मध्य एशिया से कई प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं। और पटना पुराना सचिवालय के पास जो है जलाशय, पटना शहर के भीतर स्थित इस जलाशय में ठंड के मौसम में विदेशी और प्रवासी पक्षी मेहमान के तौर पर आते हैं। और भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर जिले में जो है, यहाँ मध्य एशिया से विभिन्न प्रकार की बतखें और सारस प्रवास के लिए आते हैं। नागी नकटी जमुई, भीम बांध और पटना, इन प्रवासी पक्षियों को देखना बड़ा ही सुंदर और मनोरम लगता है। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमें जब भी मौका मिलता है, जब एक साथ छुट्टियां होती हैं और एक्स्ट्रा छुट्टियां लेकर सपरिवार तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए हम जाना पसंद करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारा मन ही पंछी ही तो है जो सतत आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच जाना चाहता है। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो मन बिना टिकट बिना किसी साधन के हजारों मीलों का सफर करेंगे सुरीली सफर के साथ। बिल्कुल, आज हम टिकट लेकर नहीं उड़ रहे हैं बल्कि बिना टिकट के इस यात्रा पर निकल चुके हैं, है ना। आप भी महसूस कर रहे हैं ना इस हवाई यात्रा को।

यह आवाजें थी आशा भोंसले और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम था 9-2-11। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार सचिन देव बर्मन थे। हमारे श्रोता अपनी टिप्पणी में बहुत सी बातें लिख रहे हैं। एक श्रोता का लिखना है कि खुले आसमान में उड़ने का मौका मिलेगा तो सबसे पहले विविध भारती का मुंबई और दिल्ली का जो विविध भारती स्टूडियो देखने की उड़ान वो भरेंगे। क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने अपनी बात रखी है लेकिन कुछ स्पष्ट नजर नहीं आ रहा। आप लिखते हैं कि थाईलैंड राष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान में पंछियों के साथ 2 घंटे, बस इतना ही आपने लिखा है। शायद आप ये कहना चाहते हैं वहां पर आपने 2 घंटे बिताए, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि 1968 में 6ठी क्लास में पढ़ते हुए जंगल से तोते का बच्चा लेकर आए, अभी उसके पंख भी नहीं आए थे। रूई के फाये से दूध पानी चौंच में डालकर उसको बड़ा किया और एक मराठी भाषी मित्र को दिया, उसने उसे मराठी सिखा दी। इकड़े आला कोठे जला, अच्छी मराठी बोलता था तोता। मैं बाहर चला गया, उनका भी तबादला हो गया और बाद में पता नहीं कि किसको दिया तोता। 20 साल बाद एक गली में उसकी आवाज पहचान ली और मराठी में बात की तो उसने भी जवाब देकर पहचान पूरी कर ली। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। सच बताऊं मैंने भी ऐसे ही एक तोता मैना पाले और तोता उड़ गया एक दिन। अब मैना उदास हो गई, मैंने फिर उसको भी उड़ा दिया। मुझे लगा कि शायद इतने दिन मेरे साथ रहे हैं तो वापस आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। तो कई बार ऐसा भी होता है कि इन पंछियों से प्यार करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा दिल लगा बैठते हैं और फिर उनके उड़ान भरने के बाद हमें दुख भी होता है और शायद कई दिन तक ये दुख रहा। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो जहां सपनों की उड़ान देखनी है उस यथार्थ को प्रवासी पंछियों की उड़ान जैसा दिखाया गया है, जो बड़ा लंबा रास्ता तय करके यहां तक पहुंचते हैं और फिर अपने जन्म स्थान को मौसम अनुकूल होने के बाद लौट जाते हैं। बिल्कुल सही लिखा आपने। और एक श्रोता लिखते हैं कि प्रवासी पंछियों का आवागमन इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि ज्ञान या विवेक किताबों या विद्यालयों तक सीमित नहीं है। प्रवासी पक्षी प्रकृति के नियमों के साथ पूरी तरह तालमेल से रहते हैं। ये हवा के रुख, हवा में उपस्थित गंध, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और ब्रह्मांड में सितारों की स्थिति को बिना किसी कंपास के समझ लेते हैं। यहां एक बात महत्वपूर्ण यह है कि पंछी प्रकृति से अलग हटकर नहीं बल्कि उसका एक हिस्सा बनकर जीते हैं। यहां ऋतु से आशय ब्रह्मांड की वो प्राकृतिक और नैतिक व्यवस्था है जो संपूर्ण सृष्टि को संचालित करती है। पक्षियों का ये एक निश्चित समय पर उड़ान भरना और बिना रास्ता भटके नियत स्थान पर पहुंचकर प्रवास काल को पूर्ण कर वापस लौटना इसी ऋतु का प्रमाण है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी है। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर है आज की इबारत, मन तो बहुत ऊंची उड़ान भरता है, हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते गाना भी नहीं याद आता है, लेकिन शायद मन कहीं न कहीं भटक जाता है। तो उड़ान भरिए ना, मन की उड़ान को भला किसने रोका है। आइए मन की उड़ान भरते हैं इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है अनाड़ी, आवाजें लता मंगेशकर और सखियों की, शब्दकार हसरत जयपुरी और धुन शंकर जयकिशन की।

लगता है हमारे श्रोताओं को पंछियों से बहुत प्यार है, इसलिए बहुत अच्छी बातें वो लिख रहे हैं। पढ़ने में हमें भी मजा आ रहा है और हमें लगता है जो सुनने वाले श्रोता हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। हमारे श्रोता ने लिखा है कि गांव में हमारे घर के आंगन में कुछ मैना रहा करती थी जो पालतू नहीं थी पर वहीं पर रहती थी। हम आंगन में रोटी के बहुत बारीक टुकड़े डाल देते थे और वो उन पर झपटती थी, आपस में लड़ती थी, कई प्रकार की आवाजें निकालती थी और बहुत शरारती होती थी। अच्छा, आपने दृश्य सामने देखा, कितना मजा आया होगा, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमने एक तोता पाला था जो हमारी तरह ही बोलता था। एक दिन उसको अरे आपने मैगी खिला दी, उसको बहुत पसंद आ गई। जब तो भूखा होता मेरा नाम लेकर बोलता किट्टी मैगी, किट्टी मैगी। पापा ने उसको बोला कोई मैगी नहीं खाएगा तो वो तपाक से बोला पापा गंदे हैं। ये सब सुनकर हम बहुत हंसे। बिल्कुल सही कहा, तोतों की कहानियां तो बड़ी गजब की है भाई। बहुत ही मजा आता है जब हम तोता पालते हैं या हमारे घर में आता है और अपनी अलग अंदाज से वो बात करता है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आपने कहा कि क्या हम जाना चाहेंगे। बिल्कुल हम उड़ान पर जाना चाहेंगे। कुछ संगी साथी बिछड़ गए हैं उन्हें ढूंढने के कि वे कहां पर है उनसे मिलने के लिए। अरे आपने बहुत गंभीर बात लिख दी है ना। वहीं एक श्रोता ने बहुत ही प्यारी टिप्पणी की है कि जिंदगी एक सफर है सुहाना। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहां कल क्या हो ये किसने जाना, ये भी तो आप जानते हैं। एक श्रोता का कहना है कि आज की इबारत मदमस्त आजाद पंछी को याद करने की है, बिल्कुल वैसी ही है। और एक श्रोता ने कहा कि मैंने कभी नहीं पाला पंछी, लेकिन क्योंकि पंछी को पिंजरे में रखना ठीक नहीं है, वे खुले आसमान में उड़ने के लिए बने हैं। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं पंछी पाले तो नहीं है पर दाना पानी रखने से बहुत सारी चिड़िया बुलबुल और गिलहरियों का आना जाना लगा रहता है। गिलहरी तो बिल्कुल पालतू

ऐसी ही है, मूंगफली न मिले तो चिक चिक करती है, बिल्कुल बहुत ही प्यारी लगती है गिलहरी। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि एक महीने के बाद विविध भारती से जुड़ा हूँ। अरे क्या हुआ, एक महीने आप नहीं जुड़ पाए, चलिए अब लगातार जुड़े रहिएगा। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज बहुत व्यस्त हूँ, किसी खास काम की वजह से नहीं जुड़ पाऊंगा आज के इस कार्यक्रम से। चलिए हो सकता है आप किसी महत्वपूर्ण काम की वजह से आज का कार्यक्रम नहीं सुन पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही आप फ्री हो तो विविध भारती से जुड़े रहिएगा। एक श्रोता ने कहा है कि आपने पूछा कि क्या कोई पंछी पाला है, तो मेरा ये मानना है कि एक प्रकार से किसी की गुलामी का प्रतीक होता है, परिंदों की उड़ान उन पर ही छोड़ देनी चाहिए, न कि पिंजरे में कैद करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सुंदर। किसी को कैद करना चाहे पंछी हो चाहे इंसान हो, सोचिए क्या दर्द होता है उनका, है ना। आइए सुनते हैं बहुत ही प्यारा गीत, चितलकर यानी सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, आवाजें लता मंगेशकर और चितलकर की ही है, फिल्म का नाम है बारिश। अच्छा ये बताइएगा, किसी पंछी से आपको कोई खास लगाव रहा है कभी?

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि प्रस्तुत गद्य पद्यमयी इबारत की इबादत से ये बात सामने आई कि आज खुले आसमान तले पंछियों की तरह उड़ान भरने वाले मानव के मन की उड़ान के आकलन की भी बात होगी। इसके अतिरिक्त उड़ान की दिशा और दशा की तुलना भी पंछियों की उड़ान से भली भांति तरीके

से की जाएगी। अब देखना यह है कि आज हम लोग किस तरह से समूचे एक घंटे के लिए अपनी उड़ान के साथ उड़ते हुए जीवन की उड़ान में सफल होते हैं। बहुत सुंदर। देखिए मन की उड़ान तो हम कभी भी भर सकते हैं इस एक घंटे में, तो क्या हम पूरे दिन शायद कहीं न कहीं हमारा मन उड़ता ही है। लेकिन हाँ, ये एक घंटा जो सुरीला सफर आज हमने मन की उड़ान को दिया है, पंछियों की उड़ान को दिया है, उसमें हम बहुत दूर तक सफर कर सकते हैं। सफर कर सकते हैं आप, है ना, बताइएगा कर रहे हैं कि नहीं। वहीं एक शोधा लिखते हैं कि प्रवासी पक्षी मीलों सफर करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं मौसम के अनुसार और फिर वापस लौट आते हैं। हम भी कल्पना की दुनिया में उड़ान भरने लगते हैं, सपने को साकार करना चाहते हैं, अपने जीवन को नई दिशा देते हैं और गुनगुनाने लगते हैं, उड़ चला पंछी बन के मन मेरा सागर के पार। बहुत अच्छा। वहीं एक शोधा लिखते हैं कि मन की उड़ान का मतलब हुआ कल्पनाशीलता, रचनात्मकता, असीमित सोचने की क्षमता। जब हम रोजमर्रा की जिंदगी के तनाव, जिम्मेदारियों और बंधनों से थक जाते हैं तब हमारा मन एक नई ऊर्जा की तलाश में उड़ान भरता है। ये उड़ान कभी पुरानी खूबसूरत यादों की गलियों में होती है तो कभी आने वाले कल के हसीन सपनों में। और एक लेखक की कलम, एक चित्रकार के रंग और एक वैज्ञानिक की खोज सब मन की इस उड़ान का परिणाम है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब आपने लिखा है। आपकी जो अंतिम लाइन है उसने हमारा मन जीत लिया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इंसान भी पंछियों की तरह जीवन भर सफर ही करता रहता है क्योंकि इंसान को भी सही दिशा का ज्ञान नहीं होता। जीवन के सफर में हमारे द्वारा किया गया कर्मों के अनुसार एक अदृश्य शक्ति पक्षियों की तरह हमसे भी पहुंचा देती है। अच्छा, आपने कुछ लिखा है पंछी बनी उड़ती फिरूं, मतलब आपका कहने का मतलब है कि हम अपने कर्मों के अनुसार उड़ान भरते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पंछी तो मैंने पहले एक तोता पाला था जो एक बार पिंजरा खुला उड़ गया और उसके बाद मेरे पास अभी एक कछुआ है जिसकी मैं अच्छे तरीके से देखभाल करता हूं। वैसे मुझे पक्षी पसंद है और मैं रोज उन्हें दाना भी डालता हूं। बहुत अच्छी बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि सुबह सुबह उड़ते हैं तो मोर का टहू का सुनाई देता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। आसमान में पंछियों का झुंड लाइन में उड़ता देखकर मन को बड़ा आनंद आता है। आसमान में छोटी छोटी चिड़िया उड़ती हैं, चहकती हैं, दाना खाती हैं तो देखकर मन को बड़ा सुकून मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जी नहीं, मैंने आज कोई पंछी को पिंजरे में, आज तक किसी पंछी को पिंजरे में बंद करके नहीं रखा है। आकाश की ऊंचाइयों को छूने वाले पक्षियों को कभी भी कैद करके नहीं रखना चाहिए, पाप लगता है। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे घर में मैंने गार्डन मेंटेन किया हुआ है जहां बहुत से फ्लावर लगे हैं, प्लांट्स लगे हैं और सुबह सुबह जो है रंग बिरंगी तितलियां और चिड़ियां आती हैं, उनकी आवाज सुनना बहुत पसंद होता है, दिल खुश हो जाता है उनको देखकर और उनकी आवाज सुनकर। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी बेटी चिड़ियों को पालने का बहुत शौक है। मेरी बेटी को अच्छा चिड़िया पालने का बहुत शौक है, कई बार लेकर एक उड़ गई और फिर एक मर भी गई, फिर बहुत दुख हुआ इसलिए अब हम नहीं लाने देती हूँ। अच्छा, आपने थोड़ा साफ नहीं लिखा है, इसलिए अब मैं होना चाहिए ना, नहीं लाने देती हूँ। पंछी आसमान में उड़ते हुए अच्छे दिखते हैं न कि पिंजरे में। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही कहा। जब कोई पंछी हम पालते हैं या अपने आसपास देखते हैं और वो उसकी मृत्यु हो जाए तो वो दृश्य बहुत बहुत बहुत खतरनाक होता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं ऐसी कल्पना करके भी, और आज हमारी कल्पना बहुत सुखद है। ये विषय बड़ा अजीब है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मेरे घर में एक तोता था, नानी ने पाला था, ससुराल में तो पूरा कबूतरों का झुंडी पाला हुआ था। अच्छा, पर पंछियों को पालना नहीं चाहिए। अभी मेरे फ्लैट के ऊपर एक परिवार तोता रखे हुए था। सुबह सुबह जब अपनी मधुर मीठी आवाज में मम्मी मम्मी बोलता है तो ऐसा लगता है कोई छोटा बच्चा बुला रहा है और मन खुश हो जाता है। कभी कभी वो धीरे से डांटती है तो चुप हो जाता है, पूछता है क्या बात है तो इस बात को रिपीट भी करता रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि पंछी हमारा मन बहलाते हैं लेकिन शायद जब वो कैद में होते हैं तो उनका ही मन जानता है कि वो क्या चाहते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गीत, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें हैं, फिल्म का नाम हरे कांच की चूड़ियां। शब्दकार हैं शैलेंद्र और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने। बहुत ही खूबसूरत गीत।

आपने अभी तक इस बात का जवाब नहीं दिया कि क्या आपने अपनी जो सीमा रेखाएं बना रखी हैं मन में, उन सीमाओं को कभी आपने तोड़ा है?

तो हम हमारे दो सवाल एक बार फिर से दोहरा देते हैं। हमारा पहला सवाल था कि अगर आपको भी किसी पंछी की तरह उड़ने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों। हमारे कुछ श्रोताओं ने जवाब दिया है लेकिन बहुत ज्यादा जवाब नहीं मिले हैं। और हमारा दूसरा सवाल था कि पंछी तो आसमान की सीमाएं पार कर जाते हैं लेकिन क्या इंसान अपने मन में खींची हुई सीमाओं को कभी पार कर पाता है। सोचिए, एक गंभीर सवाल है और इसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है, ज्यादा नहीं। तो हमारे श्रोता का कहना है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर आपकी हर तरह से मुकम्मल परिपूर्ण इबारत पढ़कर मन उड़ान भरने की चाहत रखेगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि चंचल मन भी पंछी की तरह होता है, अभी अभी धरती पर होता है और देखते ही देखते आसमान में उड़ जाता है। मन जब उड़ान भरता है तब जमीन की बंदिशों को पीछे छोड़कर कल्पना आजादी और नए क्षितिज की तलाश में खो जाता है। अंबर को छूने, बीता कल भुलाने और बादलों के संग आंख मिचोली खेलने की चाहत में मन पूरी तरह बेफिक्र और आनंदित होता है। आनंद आज आपकी बातें

और गीतों से मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी इबारत लिखी है आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक परिपोषण, वंश संरक्षण, उत्तरदायित्व निर्वहन, प्राकृतिक सामंजस्य संग समुचित संतुलन ही प्रवास परिभ्रमण को प्रेरित करता है। चाहे प्राणी जगत हो या पशु पंछी जगत हो, अपनी नस्ल पहचान वंश को बचाए रखना ही प्राणी जगत का मूल उद्देश्य है। उन्हीं की उत्तरदायित्व में स्थानांतर होता है। इस प्रक्रिया में भी अपनी मूल कला, स्थान और परिवेश को दिल में जीवंत जागृत रखता है और कालांतर में उन्हें पुनः गृह वापसी को प्रेरित करता है। नई ऊर्जा उत्सर्जित करती विषय पर कार्यक्रम ही महोदया की पहचान है। अरे वाह, इस सफर का साक्षी बन हम सफर बन गर्वित होंगे। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी शुद्ध हिंदी में बात कही है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर है आज की इबारत और मन तो बहुत ऊंची उड़ान भरने वाला है। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत ही सुंदर है। इसका जो सार मैंने निकाला कि वो ये, सपने देखो और उन्मुक्त आकाश में उड़ान भरते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचो, लेकिन अपनी जमीन, उसकी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। और बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे कि जिंदगी में उड़ान सिर्फ कामयाबी पाने का नाम नहीं, एक श्रोता लिखते हैं, बल्कि अपने टूटे हुए हौसलों को समेट कर दोबारा मुस्कुराने का नाम है। जब रास्ते अकेले हों, आंखें आंसुओं से भरी हों और दिल थक चुका हो, तब भी एक गहरी सांस लेकर खुद पर भरोसा करना ही सच्ची उड़ान है। बशीर बद्र का एक शेर है, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम था सेहरा। शब्दकार हसरत जयपुरी थे और तर्ज राम लाल की थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि पिछली सर्दियों में अपनी छत पर कई वर्षों से दाना पानी बारहमास रखता हूं। पिछली सर्दियों में एक फाख्ता के जोड़े ने अंडे दिए, पर उनका बनाया हुआ घोंसला बराबर स्थान नहीं बना था, जिससे उनके घोंसले के तिनके गिर जाया करते थे। फिर मैंने वो स्थान बराबर किया और उनका घोंसला ठीक किया, उस पर एक गर्म कपड़ा बिछाया और उस पर अंडे रख दिए। तब से अभी तक फाख्ते वहीं पर अंडे देते हैं और अभी भी दो अंडे रखे हुए हैं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर काम किया, बहुत बड़ा काम किया आपने। आपने उनके घर को बनाया जो बार बार टूट जाता था। बहुत बड़ा काम है ये।

और अब हमारी उड़ान कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक पहुंच चुकी है, जहां हम चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण के बोल सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म भाभी का ये गीत।

नमस्ते दोस्तों, आज इस उड़ान में आप हमारे साथ थे, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बस ये ध्यान रखिएगा कि प्रवासी पंछियों की जो लंबी यात्रा है उनका संरक्षण और उनकी जो प्राकृतिक आवास है उन्हें बचाने का प्रयास करना और दुनिया भर में जागरूकता फैलाना ये हम सभी का कर्तव्य है। और हाँ, अपने मन की रक्षा भी हमें करनी है, यानी मन की उड़ान को कभी कम नहीं होने देना है। इस उम्मीद के साथ कि हम इस उड़ान को जारी रखेंगे, अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम की शुरुआत महबूब की मेहंदी फिल्म के गाने से, मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, शब्दकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फरमाइश भेजी आप सभी श्रोताओं ने संतोष मिरजकर पुणे महाराष्ट्र से और अमित खातरकर, निहारिका शिवपाल यादव, अनामिका अवंतिका, शिवालिका पारस मणिवाग, पंजाब राव और संदीप पाटिल ने फरमाइश भेजी थी सारथी जिला बैतूल से। इसी गाने के लिए फरमाइश आई थी सतीश पिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाखी, लखविंदर सिंह संधू, महावीर संधू और इनका पूरा परिवार मालोट कैंप पंजाब से, माधव नामदेव, सीमा नामदेव जबलपुर मध्य प्रदेश से, देवशंकर तामूरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी और इनके पूरे परिवार की ओर से फरमाइश आई थी बालोद छत्तीसगढ़ से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये फिल्म याराना किशोर कुमार की आवाज है।

याराना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, अनजान के बोल थे, राजेश रोशन का संगीत था और पसंद करने वाले हमारे श्रोता खुर्सीपा

है, इन्होंने नाम भेजे हैं जयराम पाटिल, मंजू, बालीराम पाटिल, शरीफा, नेहा, संध्या, गोलू, तनिष्का, रावी, देवांश और इनके पूरे परिवार की ओर से फरमाइश आई है इंदौर से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत। ये

गुप्ता, कापसी रोड अकोला से संतोष राव बाकड़े, ज्योति ताई, पवन कुमार और इनका पूरा परिवार, बिलासपुर से बागमारे परिवार, और फरमाइश आई थी गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, रविन्द्र रौनक सेन की ओर से, हिवरखेड़ से वासुदेव वाघ, लक्ष्मीबाई वाघ, संजय, ज्योति, आनंदी और इनके परिजन, बेरडी से हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक, प्राची और तनु।

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गाना, संगीत राहुल देव बर्मन का और फिल्म थी अनामिका। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव और इनका पूरा परिवार, और कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बरता, नीलम बरता, नितिन पलक, कर्ण, गीतू, निहारिका और हार्दिक। और फरमाइश आई थी हमारे इन श्रोताओं की ओर से।

शैलेन्द्र पाटिल, शांताबाई पाटिल, सिद्धि, सृष्टि और इनका पूरा परिवार शिंदे चौक सोलापुर महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से फरमाइशाई गन्नूलाल रजक, केआरएस अश्विनी कुमार और गणेश राव की ओर से, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश।

सावन को आने दो इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे यशोदास की आवाज में, संगीतकार राजकमल थे और फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता गुरुमीत सिंह तंगौरी, जसवीर कौर और इनका पूरा परिवार ग्राम तंगौरी से फरमाइश आई थी। नारायण प्रसाद वर्मा, मयंक जीत वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, पुष्पांजलि वर्मा की ओर से फरमाइश आई थी नौगढ़ कटई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। रविन्द्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिगम्बर गद्रे, राजेश गद्रे और सृष्टि की ओर से फरमाइश आई बरगी नगर जबलपुर से। और इसी गाने के लिए फरमाइश आई थी अहिल्या नगर से के जैन और रंजीता की ओर से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: बेमिसाल फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की तर्ज। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता बहरामपुर खरगोन मध्य प्रदेश से तिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक, अमित वर्मा और इनका पूरा परिवार, और साथ में ईशिका वर्मा, अंजलि, श्वेता वर्मा का भी नाम है। गोवर्धन जिला वाशिम से रविन्द्र पवार, मीना पवार, श्रीकांत और इनके अन्य साथी। शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन, रानी और इनके परिजन। और जिला नांदेड़ हिम्मत नगर से ये फरमाइश आई है, वाशीनाथ, ये उलकर, बबीता, अनिष्का, तन्मय और इनके अन्य साथियों की ओर से फरमाइश आई है। और गुलबदन, गुरुदर्शन, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और इनके साथियों की ओर से फरमाइश आई है, जिला तरन तारण, पंजाब से। इसी के साथ आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। चलने से पहले आपको बताते हैं, इस कार्यक्रम की प्रोड्यूसर तेजश्री कामले। अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: यह है विविध भारती।
2: नाट्य तरंग, श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं सुरेंद्र गुलाटी का लिखा नाटक प्लास्टिक की घास। आज आप सुनेंगे इस नाटक का पहला भाग। निर्देशक हैं दीना नाथ।

नई दिल्ली 17 जून। मौसम बिल्कुल नॉर्मल यानी बेहद गर्म और खुश्क। सूरज अपने सही वक्त पर यानी 5:23 पर तुलू हुआ और इस वक्त यानी सुबह के 8:59 पर पूरे आबोताब से रोशन है। लोधी रोड के सरकारी क्वार्टर F2 15/614 के बाहर श्री HP शर्मा के नाम की छोटी सी नेम प्लेट को मामूल के मुताबिक SS शर्मा साफ कर रही हैं। बाहर कमरे में 1930 के मॉडल का क्लॉक अपने मामूल के मुताबिक टिक टिक टिक टिक चल रहा है और जैसे ही क्लॉक की बड़ी सुई 12 के डिजिट तक पहुंचती है क्लॉक अपने मामूल के मुताबिक 9 बजने का ऐलान करता है और इसके साथ ही शर्मा जी अंगड़ाई लेकर उठ खड़े होते हैं। ना ना ना ना ना, ना शर्मा जी

0: उन लोगों में से नहीं जो 9 बजे तक पड़े पड़े सोते रहते हैं और अपनी जिंदगी का कीमती वक्त जाया करते हैं। शर्मा जी तमाम जिंदगी बाकायदा सुबह 5:30 बजे उठते रहे, स्नान आदि से फारिग होकर बाकायदा सुबह की सैर के लिए निकलते हैं, पूजा पाठ करने के बाद नाश्ता करते हैं और फिर ठीक 8 बजे सिर्फ घंटा भर के लिए छोटी सी झपकी लेते हैं ताकि ताजा दम होकर दफ्तर पहुंचे। उनका कहना है,
1: दफ्तर में ओंघने वाले लोगों से मुझे सख्त नफरत है।
0: अंगड़ाई लेकर उठ चुकने के बाद रोजाना के मामूल के मुताबिक तौलिया लेकर शर्मा जी बाथरूम में घुसते हैं और मिसेस शर्मा रसोई में। शर्मा जी बाथरूम से बाहर निकलकर साथ वाले बेडरूम में झांकते हैं। बड़ा लड़का किशन या कृष्ण कुमार बुशर्ट और खाकी पैंट पहने अखबार पढ़ रहा है। उनकी लड़की उषा शर्मा मामूली सी सूती साड़ी पहने किसी गाइड में से कॉपी पर नोट्स लिख रही है। उससे छोटा बेटा विनय कॉलेज जाने के लिए अपनी किताबें इकट्ठी कर रहा है। यानी शर्मा जी को शिकायत का कोई मौका नहीं, सब कुछ ठीक है। वो बाहर के कमरे की तरफ पढ़ते हैं। एन उसी वक्त मिसेस शर्मा खाने का डिब्बा शर्मा जी को थमा देती हैं, जिसे शर्मा जी अपने थैले में डाल थैला साइकिल के हैंडल पर टांग देते हैं। साइकिल की गद्दी के नीचे से छोटा सा कपड़ा निकालकर गद्दी और हैंडल साफ करते हैं। पहियों की हवा और ब्रेक चेक करने के बाद जैसे ही साइकिल की घंटी पर उनका हाथ पहुंचता है, क्लॉक 9:15 बजने का ऐलान करता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। पिछले 25 वर्षों से वो सदा ऐसा ही करते आ रहे हैं। उनका कहना है,
1: चलने से पहले साइकिल के ब्रेक्स और घंटी जरूर चेक कर लेनी चाहिए। सेफ्टी सेज।
0: घर से दफ्तर का रास्ता सिर्फ 20 मिनट का है, इसलिए वो दफ्तर हमेशा 9:35 पर पहुंचते हैं, यानी दफ्तर शुरू होने के 5 मिनट बाद। वक्त से पहले या एन वक्त पर दफ्तर पहुंचने वालों के बारे में शर्मा जी का कहना है,
1: सिर्फ 3 किस्म के लोग दफ्तर में वक्त से पहले पहुंचते हैं। एक वो जो अपने अफसरों की खुशामदी, ताकि अफसरों के आने पर उठकर उन्हें गुड मॉर्निंग सर कह सके। दूसरे वो जिनकी घरेलू जिंदगी इतनी नाखुशगवार है कि नाश्ता दफ्तर में आकर करते हैं। तीसरे वो जो दूसरों की मेजों से स्टेशनरी चुराते हैं और दूसरी हेरा फेरियां करते हैं।
0: चुनाचे आज भी अपने उसूल और मामूल के मुताबिक श्री HP शर्मा दफ्तर के लिए रवाना हुए। उनके रवाना होते ही रोजाना के मामूल के मुताबिक मिसेस शर्मा बाहरी कमरे में आकर लेट गई। मिस उषा शर्मा ने झटपट साड़ी उतारी और लो कट स्लीव लेस फड़कदार कुर्ता पजामा पहना। कृष्ण कुमार ने अखबार फेंका, जेब में सिगरेट माचिस डाली और घर के बाहर। विनय ने अलमारी से नीली जीन्स और आई लव यू वाली टॉप निकाल सीटी बजाते हुए बाल संवारने शुरू कर दिए। 17 जून का दिन सबके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। सब कुछ बिल्कुल वैसे हो रहा था जैसा कि सदा से होता चला आया है। इंसान गुजरते वक्त के तजुर्बों, अपनी उमंगों और अपनी ख्वाहिशों की बुनियाद पर आने वाले कल के रंगीन ख्वाब बुनता है। लेकिन होनी एक अजीब ही चीज है। होनी आने वाले अगले पल की जरा भी आहट नहीं देती, और जब कुछ ऐसा वैसा हो जाता है तो कहते हैं होनी अटल है। कौन जानता था कि 17 जून को होनी क्या रंग दिखाने वाली है। मिसेस शर्मा बाहरी कमरे में पूरी रफ्तार से चल रहे पंखे के नीचे आराम कर रही थीं कि अचानक उन्हें बाहर से साइकिल की घंटी की आवाज सुनाई दी।
2: अरे उषा, विनय, अरे किशन, अरे देखो ना बाहर कौन है। अरे देखो ना बाहर जाके के कौन है। तरकारी भाजी वाला हो तो कह देना कि नहीं चाहिए। अरे है, लगता है चले। अरे रुक भैया रुक, मैं अभी आती हूँ, ऐसी भी क्या उतारी। आप कैसे घर चले आए इस वक्त, तब तो ठीक है ना आप। अरे आप ठीक ठाक है ना, क्या हो गया, आप कुछ बोलते क्यों नहीं। हे भगवान, आप बिल्कुल, क्या कुछ हुआ है। बैठे बैठे मैं पानी लाती हूँ। अरे नहीं, इतनी गर्मी है, प्यास लगी होगी, जरूर आपकी तबीयत खराब है। पता ही है ना, क्या बुखार है, कहीं लू तो नहीं लग गई।
1: नहीं नहीं।
2: तो फिर क्या हुआ है बताइए ना, बताते क्यों नहीं। आपको मेरे सिर की कसम, मेरा तो दिल थक थक कर रहा है। ओ, आज सुबह सुबह मेरी आंख भी फड़क रही थी। बताइए ना क्या हुआ है।
1: क्या बताऊं।
2: अच्छा, ये तो बता दीजिए कि

0: तबीयत तो खराब नहीं है ना?
1: नहीं।
0: तो फिर और क्या बात है? नौकरी तो आपकी पक्की है, उसका तो कोई भय नहीं, फिर क्या हुआ है?
1: बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा, बहुत बड़ा अन्याय, महान अनर्थ।
0: क्या?
1: ट्रांसफर।
0: ट्रांसफर आपकी?
1: हाँ, आज सुबह ही 10:29 पर यह मनहूस खबर मुझे मिली।
0: हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया?
1: क्या बताऊं लाजवंती, खबर मिलते ही मेरे पांव तले से वो जमीन खिसक गई जहाँ पिछले 25 वर्षों से अपने जूते खिस रहा हूँ। अब क्या होगा लाजवंती?
0: किस्मत फूट गई हमारी, किस्मत फूट गई। हाय हाय, कैसा दुर्भाग्य है हमारा। हाय हाय राम, हाय, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ?
1: आगरा।
0: आगरा। हाय राम।
2: हाय हाय, क्या हो गया लाजवंती बहन?
3: पहले मैंने भाई साहब को घर लौटते देखा, फिर तुम्हारे रोने की आवाज आई, तो मैंने सुशीला बहन को भी बुला लिया।
2: भाई कौन था बहन?
3: कोई आपका सगा था या भाई साहब का?
2: दिल्ली में था कि बाहर?
0: नहीं बहन, ये बात नहीं। आए जीना मरना तो भगवान के हाथ है। आए हमारे साथ पूरी अनर्थ हो गया।
2: हौसला रखो बहन, हौसला रखो।
3: अरे बच्चे तो ठीक ठाक हैं।
0: आए भगवान उन्हें लंबी आयु दे, सब ठीक है।
2: बहन फिर हुआ क्या?
0: अरे किस्मत फूट गई हमारी तो किस्मत।
3: भाई साहब की नौकरी?
0: अरे पक्की नौकरी है उनकी, सरकारी पक्की नौकरी। पर क्या बताऊं? आए क्या बताऊं, भगवान ने कैसा अनर्थ कर दिया।
3: अनर्थ?
0: अनर्थ। आए इनकी ट्रांसफर हो गई।
2: हाय राम।
3: सबर करो बहन, धीरज रखो।
1: लाजवंती हौसला रखो।
0: किसे मालूम था कि एक दिन ये आस पड़ोस या घर छोड़कर जाना पड़ेगा।
2: बस धीरज रखो बहन, कोई ना कोई उपाय अवश्य निकलेगा।
0: उपाय निकलेगा? अरे क्या उपाय निकलेगा, हमारा तो घर बारी उजड़ गया।
2: बस बस बहन उठो, देखो पानी वानी पियो, भाई साहब कितनी गर्मी में बाहर से आए हैं, मुंह हाथ धो और इन्हें जलपान करा, मन को शांत रखो बहन, और इसका कोई उपाय सोचो।
0: ठीक तो कहती हो बहन।
3: तुम कोई फिक्र न करो मिसेस शर्मा, थोड़ी देर आराम कर लो, वो जलपान मैं भिजवाई देती
0: हूँ। नहीं बहन, नहीं नहीं, आप क्यों कष्ट करो।
3: आए कष्ट कैसा, दुख सुख में पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। आओ सुशीला बहन।
2: हाँ हाँ, हौसला रखो बहन, भगवान सब ठीक करेगा।
3: अभी मुन्नी के हाथ पानी वानी भिजवाती हूँ।
1: लाजवंती, क्या सोच रही हो लाजवंती?
0: आपने उसका क्या बिगाड़ा था जिसने आपको यूं उजाड़ा है? कौन है वो, जरा जरा उसे पूछिए तो।
1: न जाने कौन है।
0: किस कमबख्त ने दिया है ये ऑर्डर?
1: अरे ये ऑर्डर तो ऊपर से आते हैं, न मालूम किस अफसर के दस्तखत हैं। फिर जिसके दस्तखत होते हैं उसको भी ऑर्डर ऊपर से आते हैं। दरअसल ऑर्डर करने वाला कौन है क्या मालूम।
0: जब आप उसे नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, तो उस अनजाने कलमुहे ने किस चरम का बैर निकाला है हमारे साथ?
1: किसने क्या बैर निकाला है लाजवंती, ये तो अपने ही पिछले कर्मों का फल है।
4: अम्मा खाना लगा दो तो जरा जल्दी से, मुझे फौरन वापस जाना है।
5: पिताजी आप?
1: कृष्ण तुम
5: इस वक्त यहाँ?
1: इस वक्त यहाँ?
5: आपकी तबीयत तो ठीक है ना पिताजी? अम्मा आपकी आंखें क्यों सुर्ख हो रही हैं? बात क्या है?
0: क्या बताऊँ बेटे,
5: हुआ क्या है कुछ बताइए तो।
1: आज सुबह 10:29

0: 30 मिनट पर मुझे ये मनहूस खबर मिली है कि मेरा ट्रांसफर हो गया है।
1: ओ, तो उन्होंने वार कर ही डाला।
0: किसने, किस पर?
1: जालिम हुक्मरानों ने, अपने गुलामों पर।
0: क्या बक रहे हो तुम? कैसे जालिम हुक्मरान, कहाँ के गुलाम? अरे हम एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं।
1: ये सब धोखा है। आप अपने आप को स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक समझते हैं?
0: बेशक।
1: तो फिर आपका ट्रांसफर करने से पहले आपसे पूछा क्यों नहीं गया? इकबाल ने तो अपने शेर में भी कहा है कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी मर्जी क्या है।
0: रजा, रजा।
1: अब हाँ हाँ, वही वही मतलब है। जब खुदा को भी बंदे की मर्जी जाने बिना ट्रांसफर करने का हक नहीं, तो फिर उन्होंने आपकी ट्रांसफर कैसे कर दी, क्यों कर दी? क्या इसलिए कि आप कमजोर हैं, हालात के गुलाम हैं? आपने अपनी जिंदगी के बेहतरीन 25 साल उनकी खदमत गुजारी में कुर्बान कर डाले, और बदले में मौका मिलते ही उन्होंने आपको दूध से मक्खी की तरह निकालकर बाहर कर डाला। क्या आप अब भी इनकलाब का नारा नहीं लगाएंगे? इस जबरदस्त नाइंसाफी के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे? मेरे साथ मिलकर बोलिए, इनकलाब, इनकलाब।
2: शराब बदतमीज,
0: तुम नहीं जानते मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं। इस किस्म के नारे लगाना सर्विस कंडक्ट रूल्स के खिलाफ। जरा सोचो, ये क्या बक रहे हो तुम, जरा सोचो।
1: आप नहीं समझेंगे पिताजी, आप मुझे सोचने के लिए कह रहे हैं, जबकि सोचने की जरूरत आपको है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने तमाम जिंदगी काम किया है, कभी सोचा नहीं। और मैंने कभी काम को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ सोचा है।
0: दो वक्त का खाना तुम्हारा बाप जो जुटा रहा है,
1: वो खाना जो 25 साल तक एक बहुत बड़ी मशीन के एक मामूली पुर्जे की तरह काम करने के बदले मालिक आपको देते आ रहे हैं।
0: अरे कौन से मालिक, किसके मालिक? दिमाग चल गया तुम्हारा?
1: चल रहा है दिमाग उन साम्राज्यी ताकतों का जिनके हाथ बहुत लंबे हैं, बहुत लंबे, हजारों मील एज द क्रो फ्लाइज, और उससे भी लंबे अगर भाई सी आए तो। हो सकता है पिताजी उनको एक मामूली से पुर्जे यानी आपकी सीट की अहमियत का अंदाजा लग चुका, या वो यहां अपने किसी लोकल एजेंट को बिठाना चाहते हो। ये ट्रांसफर उन्हीं विदेशी ताकतों की एक गहरी साजिश है। दुनिया के बड़े बड़े सरमायादार, ये इंडस्ट्रियलिस्ट।
0: बेवकूफ, पागल, गधे, तुझे शर्म नहीं आती? ऐसे कठिन समय में ऐसी ऊट पटांग बेसिर पैर की हाके जा रहा।
3: जब से इसकी नौकरी छूटी है रोज ऐसी ही बहकी बहकी बातें करता है।
1: नौकरी छूटी नहीं, छोड़ी है मैंने, लात मार दी है गुलामी पर। गुलामी की चिकनी चुपड़ी से आजादी की रूखी सूखी अच्छी,
0: और बेकारी के फाके उससे भी अच्छे। जी चाहते ऐसी निकम्मी औलाद को लात मार के घर से बाहर निकाल।
3: हाय हाय, अब घर भी कहाँ रह गया है। मैं कहती हूँ जी, कुछ तो सोचो, ऐसी विपता सिर पर पड़ी है और बाप बेटा आप आपस में झगड़ रहे हैं। आप मिल बैठ के कुछ सोचिए कि अब करना क्या है।
1: आई एम सॉरी डैडी, मुझे क्षमा कर दीजिए, अचानक ऐसी बुरी खबर सुनकर मैं जोश में आ गया था। मेरी पार्टी की ट्रेनिंग ही कुछ ऐसी है।
0: अब निखट्टू बेकारों ने अपनी कोई पार्टी भी बना ली है।
3: ओहो, फिर वही। जाओ जाओ कृष्ण, तुम अपने कमरे में जाओ, आंटी जरा शांत होकर बैठिए, जरा सोचिए तो सही कि करना क्या है।
0: करना क्या है, क्या हो सकता है? ओनी बड़ी बलवान है लाजो, और इंसान बहुत कमजोर।
1: लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे। आपको कुछ करना चाहिए।
3: और क्या, कुछ ना कुछ कोशिश तो करनी ही चाहिए।
0: अरे तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ? आज सुबह ही दफ्तर के तमाम बाबुओं ने फैसला किया है।
1: कल से स्ट्राइक?
0: अरे नहीं बेवकूफ, कल 11 बजे एक मीटिंग होगी जिसमें ये फैसला किया जाएगा कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए। मैं सोचता हूँ जो कुछ भी करना है कल की मीटिंग के बाद किया जाए।
4: उसी रोज यानी 17 जून की शाम, वक्त लगभग 5:30 और 6 बजे के बीच, उषा शर्मा कॉलेज से घर लौटी है। वक्त से पहले अपने पिता को घर पर देखकर अचानक ही हड़बड़ा उठी, और हड़बड़ाहट में यह भी भूल गई कि उसने बिल्कुल ऐसे वस्त्र पहन रखे हैं जो मिस्टर शर्मा के कथनानुसार
0: शरीफ खानदान के बेटे बेटियों का पहरावा नहीं है। ये पहरावा कम है, दिखावा ज्यादा।
4: बाहरी कमरे में उषा शर्मा की एंट्री के वक्त कुछ तो रोशनी फीकी सी थी, कुछ मिस्टर शर्मा की तबीयत निढाल, शायद आंखें भी अधमुंदी सी थीं। शर्मा जी को यकीन है कि सब कुछ बहुत साफ नहीं था, इसलिए उषा की आवाज सुनते ही,
5: मामी, मामी, पिताजी, आप? बाप रे,
0: कौन?
5: मैं कोई नहीं।
0: कौन? लाजवंती? अरे उषा ही है क्या?
5: उषा? हाँ, नहीं।
0: तो कौन घुसा है अभी घर में?
5: उषा,
0: वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि इस घर में हो क्या रहा है, ऐसे कपड़े पहनने की इजाजत किसने दी उसे?
3: हो किसे?

0: कोस रहे हैं।
1: मैं पूछता हूँ ये कैसा पहरावा है?
0: ओफो, पूरी बात तो सुन लिया करो। मैंने कहा उषा की कोई सहेली थी, उषा तो कभी की आई हुई है।
2: बुलाओ उसे।
0: अरे इधर क्या आएगी बेचारी, घर आते ही जब से मनहूस खबर सुनी है बेचारी रोए जा रही है।
3: ओह हे भगवान, मेरा नहीं तो इन नन्हे नन्हे मासूम बच्चों का ही कुछ ख्याल किया होता।
2: विनय लौट आया कॉलेज से?
0: हाँ, वो भी बहुत परेशान था, अपने किसी दोस्त को मिलने गया था, आता ही होगा।
1: सूरज ढलने के बाद बच्चों का घर से बाहर रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
0: आप सूरज ढलने की बात करते हो, हमारे लिए तो अब सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब ही गया है।
3: हौसला रखो लालवंती, कुछ न कुछ उपाय अवश्य निकलेगा, अवश्य निकलेगा।
1: विनय।
4: जी पिताजी।
1: कॉलेज से लौटकर तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए।
4: इफ यू डोंट माइंड, आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ?
1: कैसा सवाल?
4: इतने सालों से आप दफ्तर में काम कर रहे हैं और आपके आसपास क्या हो रहा है इसकी आपको जरा भी खबर नहीं रहती?
1: विनय,
4: आपकी ट्रांसफर होने वाली है, इसकी खबर तक न मिली आपको?
1: खबर आज ही आई है।
4: आज ऑर्डर आए हैं, आप जरा भी होशियारी से काम लेते तो इसकी खबर आपको पहले हो सकती थी।
1: तुम्हारा मतलब क्या है?
4: खबर पहले मिल जाती तो ऑर्डर रुक सकते थे।
1: ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर ऊपर से आते हैं, ये तो मेरे हाथ की बात है।
4: पिताजी आपको ये तो सोचना चाहिए था कि आपकी ट्रांसफर से हमारी जिंदगी, हमारे एजुकेशन, हमारे करियर का क्या बनेगा।
1: तो ट्रांसफर क्या मैं खुद करवा रहा हूँ?
4: लेकिन ट्रांसफर ना हो इसकी कोशिश तो कर सकते थे आप, और ट्रांसफर हुई भी थी तो किसी अच्छी जगह हो सकती थी, बम्बई, लंदन, न्यूयॉर्क, कहीं करवा लेते तो भी इज्जत रह जाती। अब क्लास में किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरे डैडी की ट्रांसफर आगरे हुई है? सब कहेंगे आगरे के पागल खाने में जा रहे हैं।
1: तू क्या बक रहा है बेवकूफ कहीं का?
4: डोंट माइंड पिताजी, एक बात मैं साफ बताई देता हूँ, मैं दिल्ली छोड़कर नहीं जा सकता।
1: तुम दिल्ली छोड़कर नहीं जा सकते?
4: कैसे जा सकता हूँ, यहाँ मेरा करियर है, एक अपना सोशल सर्कल है।
1: तुम्हारा सोशल सर्कल?
4: मैं आपकी तरह जिंदगी भर दफ्तर में क्लर्क ही नहीं कर सकता। अगर आप ट्रांसफर नहीं रुकवा सकते तो आप लोग जाइए, मैं यहाँ हॉस्टल में रह लूंगा।
1: क्या, तो यहाँ हॉस्टल में रह लेगा? और खर्चा, खर्चा कौन देगा?
4: ऑफ कोर्स आपको देना होगा।
1: मैं इस तनख्वाह में तुम्हें हॉस्टल का खर्चा दे सकता हूँ?
4: तो ना सही, मैं कुछ छोटा मोटा काम कर लूंगा।
1: और मेरे इस घर बार के साथ, इसके साथ नहीं रहोगे?
4: मैं घर के साथ चिपका रहा हूँ या अपना फ्यूचर देखूं? आज आप ये ट्रांसफर नहीं रुकवा सकते, आगरे चले जाएंगे, फिर वहां से निकाल वो आपको वैल्यू ट्रांसफर कर देंगे, वहां से गाजियाबाद कर देंगे, वहां से धनबाद, और धनबाद से फिरोजाबाद। माल गाड़ी की तरह आपको यहाँ से वहां, वहां से यहाँ शंटिंग करते फिरेंगे। हम साथ साथ अपनी जिंदगी कहाँ बर्बाद करते रहेंगे पिताजी?
1: मेरे साथ, अपने परिवार के साथ रहने में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है।
3: हे भगवान, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, मेरी औलाद मुझे इस तरह, मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूर हो जा मेरी नजरों से।
0: विनय, अपने पिताजी के सामने जबान खोलते तुझे शर्म आनी चाहिए।
4: नहीं अम्मा, मैंने ये सब कुछ मैं क्या बताऊं, अम्मा मैं क्या बताऊं, मैं दिल्ली छोड़कर नहीं जाना चाहता, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा।
1: निकल जा मेरे घर से, चला जा यहाँ से, जहाँ तुझे रहना रह ले, बाप का घर छोड़कर दिल्ली में जहाँ रह सकता है रह ले।
0: ओहो, आप क्यों बच्चों पर क्रोध करते हैं? जिसे बाप का घर कह रहे हो वो अब कितने दिन और हमारा है? आए राम, किसे पता था कि एक दिन यूं बैठे बिठाए सारा घर बार उजड़ जाएगा।
4: आई एम सॉरी पिताजी, ट्रांसफर की बात सुनकर मुझे ऐसा शॉक लगा कि मैं न जाने क्या क्या कह गया, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी।
3: तुम लोग क्या समझते हो बेटे, मैं क्या कम परेशान हूँ? पिछले 25 वर्षों में पहली बार दफ्तर से भाग कर आया हूँ और सुबह से इस खटिया पर पड़ा हूँ।
4: लेकिन पिताजी, खटिया पर पड़े रहने से क्या होगा, कुछ कीजिए ना।
3: हाँ कर रहा हूँ। कल सुबह एक मीटिंग होने वाली है, बस उसके बाद ही कोई एक्शन लूंगा।
5: अगले रोज यानी 18 जून सुबह 11 बजे मिस्टर शर्मा के ऑफिस में।
6: भाई साहब, आजी भाई साहब, जी जी, चालान देखकर जरा इस पर दस्तखत कर दीजिए, कैश जमा करवाना है।
7: लंच के बाद आना?
6: लंच के बाद आपका कैश काउंटर बंद हो जाता है
7: तो जनाब? फिर सुबह जरा जल्दी आना था।
6: लेकिन जनाब वक्त तो अभी भी है।
7: कहाँ है वक्त, 11 बज रहे हैं, स्टाफ की मीटिंग है।
8: अरे ललित बाबू, और 11 बज गए, चलो भाई बड्डे बाबू जी की मीटिंग का वक्त हो गया है।
7: चलो चलो।
6: अरे भाई साहब, बस एक मिनट की बात थी, एक नजर देख जाते, बड़ी मेहरबानी होती आपकी। बात यह है, आज पैसा जमा कराना बहुत जरूरी था।
7: कमाल है साहब, यहाँ बड़े बाबू की जिंदगी मौत का सवाल बना हुआ है और आपको पैसा जमा करवाने की पड़ी है। आपके सीने में इंसान का दिल है या पत्थर?
8: ओए चलो ना ललित बाबू, ये पब्लिक तो हमको अपना घरेलू नौकर समझती है।
7: चलो चलो चलो।

0: आओ आओ ललित बाबू आओ, इधर आओ, आओ भाई आओ।
1: नमस्कार बड़े बाबू जी।
2: अरे बड़े बाबू, आप तो बस एक ही दिन में इतने कमजोर लग रहे हैं जैसे महीने भर की बीमारी से उठे हैं।
1: नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है।
0: अरे भैया, ट्रांसफर की चोट लकवे से कम नहीं होती, अचानक आती है और इंसान को अधमुआ करके चली जाती है।
3: फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि बड्डे बाबू की बर्दाश्त का जवाब नहीं।
2: सो तो है, पर अब सोचना ये है कि इस ट्रांसफर को रुकवाने के लिए क्या एक्शन लिया जाए।
0: कुछ न कुछ एक्शन तो लिए ही जाना चाहिए। रामलाल, जरा कैंटीन से जरा चाय तो लिया।
4: इतने चाय?
0: यही चार पांच, और चार पांच प्लेट बढ़ेगी।
4: और पैसे?
1: ये ले, मैं देता हूँ।
2: अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं बड़े बाबू, ये नहीं हो सकता बड़े बाबू,
1: ऐसा नहीं हो सकता। एक ही बात है भैया, एक ही बात है, एक दिन में क्या मैं इतना पराया हो गया?
3: नहीं, नहीं, नहीं, चलो नहीं, चलो नहीं, जैसे बड़े बाबू जी कहते हैं कर लो।
1: ले ले, ले, ले, चलो, चलो। ये ले 10 करोड़ और लपक के ले आ जा।
0: मेरी राय में तो बड़े बाबू, सबसे पहले आपको करमाकर साहब से मिल लेना चाहिए। क्यों भाई?
3: हाँ बिल्कुल,
1: मगर वो क्या कर सकता है?
3: बड़े बाबू जी, आप तो जानते हैं किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रोसीजर में कच्चा नहीं होना चाहिए। देखो ना, वो है आपका इमीडिएट अफसर, उसको बाईपास करके सीधा ऊपर जाना अगेंस्ट द प्रोसीजर हो जाएगा। क्यों भाइयों?
2: सही बात,
1: सही है। अच्छा तो फिर पहले मैं करमाकर साहब से ही मिल लेता हूँ, और क्या।
0: और फिर आपने तो कितना कुछ किया है करमाकर साहब के लिए।
1: हाँ सो तो है,
2: बस एक नोट लिख दे वो तो रुक गई ट्रांसफर। क्यों भाई?
3: बिल्कुल
0: सही बात,
1: बिल्कुल सही बात,
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: आज ही मिल लीजिए,
1: पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी।
0: बिल्कुल नहीं, आपको अपॉइंटमेंट लेने की क्या जरूरत? अपॉइंटमेंट ली तो मामला भाप, अगला पहले से ही कोई एक्सक्यूज सोच लेगा, बस सीधा जा पहुंचे उसके पास। क्यों भाई?
1: बिल्कुल ठीक बात है। तो ठीक है, मैं आज ही करमाकर साहब से मिल लेता हूँ।
5: मीटिंग से उठना मिस्टर शर्मा का, और उसी रोज यानी 18 जून को ही जाना करमाकर साहब के पास।
6: मे आई कम इन सर?
7: आओ आओ मिस्टर शर्मा, कम इन कम इन, आओ बैठो। कैसे आया
1: सर? आपसे थोड़ा वो एक पर्सनल काम था।
7: हाँ हाँ बोलो
1: सर। वो बात ये थी कि
8: आपने तो इतना कुछ किया करमाकर साहब,
1: सर आपको याद होगा जब आप दिल्ली आए थे तो आपको स्टेशन पर रिसीव करने मैं ही आया था।
7: हाँ याद है।
1: जब आपको सरकारी क्वार्टर न मिला था तो गुप्ता जी के क्वार्टर का आधा कमरा मैंने ही दिलवाया था सर।
7: याद है बरोबर।
1: पहले 2-3 महीने आपकी सारी फाइलें मैं ही अपनी बाइसिकल पर आपके घर पहुंचाता रहा हूँ।
7: बरोबर।
1: और एक दिन वो भीनी भीनी सुगंध वाला रुमाल जो आप दफ्तर में भूल गए थे, जिस पर अंग्रेजी का शब्द।
7: बरोबर बरोबर मिस्टर शर्मा, हमको सब कुछ याद है। You have done a lot for me.
1: आपको सब कुछ याद है?
7: Of course.
1: अगर सचमुच अपने सारे करियर में पूरे फर्ज से ड्यूटी मैंने निभाई है, सच्चे दिल से आपकी सेवा की है, तो बस एक काम कर दीजिए मेरा।
7: बोलो बोलो क्या काम है
1: सर? आपको तो मालूम है मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं।
7: मालूम जरूर है, पर उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। बाय गॉड, ये ऑर्डर हमारा नहीं है।
1: ये मैं जानता हूँ सर, लेकिन अगर आप चाहें तो ये ट्रांसफर रुकवा सकते हैं।
7: क्या मैं रुकवा सकता हूँ?
1: बेशक सर, बेशक आप रुकवा सकते हैं।
7: लेकिन ऑर्डर तो बहुत ऊपर और ऊपर से आया है।
1: कहीं से भी आया हो सर, ये ट्रांसफर रुकवा दीजिए। सर मैं घर से बेघर हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा घर हो जाऊंगा।
7: ये क्या कर रहे हैं मिस्टर शर्मा?
1: सर मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ।
7: अच्छा अच्छा अच्छा, अगर ये बात है तो हम पूरी कोशिश करेंगे। एक बात बोलो मिस्टर शर्मा, आप ट्रांसफर रुकवाना क्यों चाहते हैं?
1: आप क्या पूछ रहे हैं सर?
7: क्यों?
1: हम पिछले सैकड़ों सालों से दिल्ली में रहते आ रहे हैं। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, और उससे पहले सुना है मेरे परदादाजी भी दिल्ली में आने वाली हर हुकूमत में सरकारी मुलाजिम रहे हैं। और आज तक उनमें से कभी किसी का ट्रांसफर नहीं हुआ। अच्छा। जरा सोचिए करमाकर साहब, अगर मेरी ट्रांसफर न रुकती तो शर्मा बिरादरी में मेरी नाक कट जाएगी, खानदान की इज्जत खाक में मिल जाएगी सर।
7: ओ आई सी।
1: हमारे पूर्वज इसी धरती पर जन्मे, इसी धरती पर परवान चढ़े और इसी धरती पर राख हो गए। हमारी नाल घड़ी है सर, नाल घड़ी है इस धरती में। आप ही बताइए, अब इस उम्र में कहाँ परदेश में जाकर भटकता फिरूंगा सर।
7: गवर्नमेंट सर्विस में तो ट्रांसफर होता ही रहता है। अब अपन को ही देख लो, अपने देश शोलापुर से कितनी दूर आकर सर्विस कर रहे हैं।
1: आपकी नाल न गड़ी होगी ना सर वहाँ पर। फिर आप जवान थे, अकेले थे, और वो खुशबू वाला रुमाल।
7: बरोबर, तुम ठीक कहते हो मिस्टर शर्मा, पर ये नाल गड़ी वाली बात समझ नहीं आई।
1: नाल सर, वो नाल बच्चे की।